आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोल्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज का विचार में आइए सुनते हैं जागृति के आंगन में इस विषय पर विचार। आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: मनुष्य अंधकार की विराट कूख में पैदा होता है, किंतु वह जागृति के आंगन में घुटनों के बल चलता हुआ बड़ा हुआ करता है, विकसित होता है। लेकिन आज वो अंधेरों के बाहुपाश में बद्ध हो गया है, जिसकी वजह से उसके जीवन में दुख, संताप, संत्रास आदि की भरमार हो गई है। वह अपने आप से लड़ते हुए थक गया है। एक लघु कथा के अनुसार महाप्रेत का दरबार सजा था, तभी एक आदमी गोदी में अपना सद्य प्रसूत शिशु लेकर वहां प्रकट हुआ और माथा रगड़कर महाप्रेत को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाप्रेत, ये मेरा सद्य प्रसूत बालक आपकी शरण में छोड़ता हूं, इसे प्रेत दीक्षा दो। ये सुनकर महाप्रेत हड़ हड़ करके हंसा और बोला, रे आदमी, इतनी भी क्या जल्दी थी, इसे कुछ समय तो मनुष्य योनि का आनंद लेने देते। इस पर वो आदमी बोला, महाप्रेत क्षमा करें, दरअसल मैंने आदमी की योनि में बहुत कष्ट उठाए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र भी महान कष्ट भोगे। मनुष्य योनि दुखों से भर गई है, इसलिए इस बालक को बालपन से ही प्रेत दीक्षा देकर प्रेत बना दीजिए, ताकि लूटपाट करता हुआ ये अपने जीवन को सुख से बिता सके। ये सुनकर महाप्रेत हड़ हड़ करके हंसने लगा। श्रोताओ, है तो ये लघु कथा, लेकिन इसके मायने विराट हैं। आखिर जिस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं, वो आज इतनी शापित क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए कि मनुष्य अंधकार के हाथों में खेलने लगा है। झूठ, कपट, चोरी, जारी, भ्रष्टाचार, अनाचार आदि ने उसकी दिव्यता को अंधेरों से भर दिया है। ये संक्रमण काल है, सत्य और असत्य के बीच सनातन संघर्ष चल रहा है, विष और अमृत की लड़ाई हो रही है। मनुष्य अमृत छोड़कर विष के सेवन का आदि हो गया है। वो भूल गया है कि वो जागृति के आंगन का दिव्य किरदार है। वो भूल गया कि सत्य की ही जीत होती है। वो भूल गया कि अमृत भी कोई वस्तु होता है। वह भूल गया कि जीवन ज्ञान का नाम है। वो भूल गया कि मुक्ति और मोक्ष उसका लक्ष्य हुआ करते थे। क्योंकि यह भूलना एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, इसलिए उसकी हिस्से की जागृति कहीं पर खो गई है। इस गहन अंधकार में खो चुकी जागृति को हमें पुनः प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है हम योग वशिष्ठ में उल्लेखित महामुनि विथव्य की जीवन दृष्टि से सीख लें। ये जीवन ज्ञान स्वरूप है, लेकिन मोह निशा में कैद ये जीवन अंधकार का उपासक बनता जा रहा है। जिस प्रकार विथव्य मुनि ने ज्ञान का आलंबन लेकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वैसे ही हम परम पद को प्राप्त न कर सकें भले ही, लेकिन मुक्ति का प्रयास तो कर ही सकते हैं। सत्य तो यही है कि सर्वत्र एक ब्रह्म की ही सत्ता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले अज्ञान रूपी संसार के दृश्य प्रपंचों को नकारना होगा। इस संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ब्रह्म के अवलंबन पर टीका एक परीक्षा काल है, जिसे हर मनुष्य को पार करना होता है। जो मनुष्य संसार को सत्य मानकर उसके दृश्य प्रपंचों में उलझकर रह जाते हैं, उन्हें बार बार नानाविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और ये एक लंबा दुष्चक्र है, जिससे मुक्ति एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करने से संभव है, और ये जागृति से ही संभव हो सकता है। पहले के वक्तों में स्कूलों के विद्यार्थी सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालते हुए जागरण के गीत गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो तात्पर्य केवल इतना है कि हमें जागृति के आंगन की शोभा बनना है। अब सोने का, निद्रा का, अज्ञान का समय नहीं रहा। शरीर और शरीर की सत्ता ही सब कुछ नहीं है, अशरीरी आत्मा ही सब में व्याप्त है, जो सबकी एक ही है। इसलिए उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि इस जगत का कल्याण कर सके। ये जगत मोह निशा के कारण बहुत

0: विद्रूप और भयानक होता जा रहा है। मनुष्य धन जमीन और स्त्री सुख के लिए युद्धरत होकर अपना ही बेड़ा गर्क करने में लगा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाते हुए जागृति के आंगन की शोभा बने।
1: आज का विचार था जागृति के आंगन में। आलेख और प्रस्तुति श्री प्रमोद कुमार शर्मा की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारू चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 259 से 261 की अंतिम चौपाई तक। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह है। एपिसोड नंबर 95।
1: एपिसोड 95 95।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, साक्षरता से सशक्त समाज की राह। वार्ताकार होंगे श्री ब्रजेश कुमार वैष्णव। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज इस कार्यक्रम का 16वां एपिसोड प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित है। वाचक स्वर रहेगा श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दस बजे सुनिए फिल्म संगीत, 11 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 1:05 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय रहेंगे साइबर बुलिंग और अजनबियों से सुरक्षा के टिप्स, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग की आधुनिक तकनीकें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तुतलाते बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी और माँ के प्रयास, रसोई की कुछ बातें, ब्यूटी टिप्स और गीत संगीत। युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण संध्या 5:05 पर होगा। आज की बात का विषय रहेगा संगत से सफलता। लघु जानकारी आप सुनेंगे जयसमंद झील, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, साथ ही रोजगार की कुछ बातें और गीत संगीत।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय रहेंगी मोटे अनाजों की खेती में कम लागत अधिक आमदनी, हमारी जनगणना हमारा विकास, विश्वकर्मा योजना। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाओं के विषय पर जानकारी देंगे श्री अजय स्वामी, बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारिक। प्रस्तुति रहेगी रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का होगा।

0: रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
1: किसान भैया राम राम। बारानी क्षेत्र में आप ज्यादा उत्पादन किया ले सका, अगर इस बारे में बात करा तो बारानी क्षेत्र में मक्को और उड़द 2:2 अंतर शस्य पद्धति में 110 किलोग्राम यूरिया और 200 किलोग्राम प्रोम खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से आप ज्यादा उत्पादन ले सका। प्रोम खाद बनाने वास्ते गड्ढे रो आकार 12 फीट लंबो, 5 फीट चौड़ो और 3 फीट गहरो होना चाहिए। गड्ढे में फसल अवशेष, ताजा गोबर और उच्च श्रेणी रो रॉक फॉस्फेट रो 100 तथा 33 किलोग्राम रे मिश्रण रो अनुपात भराई करना चाहिए। 9 दिन रे बाद 1 किलो फॉस्फेट कल्चर और 1 किलो एजेक्टो बैक्टर कल्चर भी अपावे में मिला देना है। बरानी क्षेत्र में मिट्टी ने उपजाऊ बनाने वास्ते नमी संरक्षण कर तड़ावरी मिट्टी रो प्रयोग आप इस्तर कर सका। अगर मिट्टी में क्लेरी मात्रा 33% से कम है तो रेतीली मिट्टी 100-150 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रति हेक्टेयर, रेतीली दोमट मिट्टी 50-100 ट्रैक्टर प्रति हेक्टेयर और रेतीली दोमट चिकनी मिट्टी 2550 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रति हेक्टेयर रे उपयोग से आप मक्को और मक्को गेहूँ, मक्को सरसों, मक्को तारा मीरारी 20-25% तक अधिक उपज ले सका। इरे सागे मिट्टी में नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन और सूक्ष्म तत्वारी बढ़ोतरी भी हुए और मिट्टी रे जल धारण रीजी की क्षमता है वह भी बढ़े। कम और मध्यम उपजाऊ मिट्टी में बारानी खेती से आप अधिकतम मुनाफा और कम जोखिम भी उठा सका। आधा हेक्टेयर फसल मक्का और उड़द या मूंगफली और तिल या आधा हेक्टेयर समोच्च नाली जिके मायने 8 मीटर दूरी पर 0-30 सेंटीमीटर की गहरी और 1 मीटर चौड़ी नाली बनार बीरे मायने मिट्टी डाल देनी चाहिए। 0.25 हेक्टेयर में धामण घास रह सके, 0.25 हेक्टेयर में ग्वार पाठेरो, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करौंदा, बेर, सीताफल 5 मीटर दूरी पर आप लगा सका। ग्वार पाठेरो मेड पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने लगाना है। ग्वार पाठेरो समतल और कम उपजाऊ जमीन पर 60x60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने लगानी है। फलदार पौधारी जीवन रक्षक सिंचाई हेतु 1500-150 क्यूबिक मीटर रो पक्को टाको बनार और जल संग्रहण वास्ते आप कर आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सका। बरसात रे पानी ने मृदा में संचयन करने का उपाय भी आपने सागे सागे करना है। रबी की फसल काटते ही गहरी जुताई आपने खेत में करनी है। मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाने वास्ते कार्बनिक पदार्थ 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 साल में 1 बार जरूर देना है। भूमि की सतह पर पानी रोकण वास्ते खेत ने समतल कर और भी मेड़बंदी करनी है। संचित पानी ने फसल उत्पादन वास्ते सही ढंग से उपयोग करना है और मिट्टी में पानी रे नुकसान ने रोकण वास्ते आपने उपाय करना है। मिट्टी की ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण कम करने वास्ते मिट्टी में आच्छादन करनो, खरपतवारी रोकथाम करनो और पौधारी निचली पत्तियां ने हटानो जरूरी है। उर्वरक रो उचित उपयोग करनो है जिके सु पौधारी जड़ा रो विकास हो सके और जड़ा गहराई सु पानी रो उपयोग कर सके। खरीबरी फसल रे वास्ते खेतरी जुताई गहरी करनी है जिके सु बरसात रो पानी ज्यादा संरक्षित हो सके, लेकिन रबी में उथली जुताई सही रहे जिके सु नमी रो वाष्पीकरण कोनी होवे। रबी री फसला री बुआई खरीफ री फसला काटने रे तुरंत बाद करनी है। संचित नमी रो उपयोग रबी में खेत री तैयारी में कोनी करनो, कम समय में पकन वाली फसला री किस्म काम में लेनी चाहिए। बरानी खेत में रबी री फसल में सगला उर्वरक बुआई रे समय लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई पर उर देना चाहिए, जबकि खरीबरी फसल में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश

0: पूरी मात्रा बुआई रस्म में तथा शेष नाइट्रोजन खड़ी फसल में भूमि की नमी होने पर देनी चाहिए। बीज की मात्रा सामान्य 10 से 15% ज़्यादा होवे, लेकिन पौधा की संख्या सिंचित क्षेत्र से 10 से 15% कम रखनी है। भूमि में संचित पानी के अलावा वर्षा रो इकट्ठो करियोड़ो पानी उपयोग करनो है पौधा रे विकास वास्ते और नाजुक अवस्था में भी सिंचाई करने वास्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं संप्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम् अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के एक बहुत ही अच्छे वाक्य से करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ श्रोताओं, जहां स्वच्छता का होता सम्मान वहीं बसता है सुखी इंसान। श्रोताओं, स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी आदत और हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब जब हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमारा मोहल्ला अगर स्वच्छ होता है, हमारा शहर अगर स्वच्छ होता है तो हमारा देश भी स्वस्थ और स्वच्छ होता है। श्रोताओं, स्वच्छता हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की सहभागिता से ही एक सफल अभियान जो है वो पूरा होता है। हम अगर सड़क पर कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, आसपास अगर गंदगी रखते हैं तो आप ये मानिए कि हम मानसिक रूप से भी अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। इसीलिए एक कदम स्वच्छता की ओर, यही है भारत की स्वच्छता की डोर। स्वच्छ शहर केवल सुंदर नहीं दिखता बल्कि वहाँ बीमारियाँ कम होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ जीवन भी मिलता है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। कचरा जो है वो निर्धारित स्थान पर डालें, गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने आस पास साफ सफाई रखें। साथ ही दूसरों को भी हम प्रेरित करें स्वच्छता अपनाने के लिए, क्योंकि श्रोताओं, जब स्वच्छ शहर बनेगा हमारा तभी उज्जवल होगा देश हमारा। श्रोताओं, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, अगर हम सब निजी तौर पर सहयोग करेंगे तो स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता, हम बात कर रहे थे स्वच्छता की। इस बात का विचार करते करते मन में एक और विचार आता है कि जिस प्रकार हम अपने घर, अपने शहर और अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाहर की स्वच्छता हमें स्वस्थ वातावरण देती है, जबकि मन की स्वच्छता हमें स्वस्थ जीवन देती है। कहा भी गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और भविष्य की परेशानियां, ये सब हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही सोच और स्वस्थ आदतों के साथ तनाव को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तनाव से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाना चाहिए। पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और योग हमारे मन को शांत रखते हैं। श्रोताओं, कुछ समय हम अपने शौक के लिए भी निकाल सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ हमें समय बिताना चाहिए, खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है श्रोताओं कि कर्म पूरी निष्ठा से करें और परिणाम की अत्यधिक चिंता न करें। यही चिंता अक्सर तनाव का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि तनाव को खुद से दूर रखें। जब भी तनाव महसूस हो, कुछ पल गहरी सांस लें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और ये याद रखें कि हर कठिन समय बीत जाता है। समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का हमारा साहस हमें मजबूत बनाता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा, अपनी गति होती है। छोटी छोटी उपलब्धियों का सम्मान करें और स्वयं को स्वीकार कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ अगर हम चलें या जिएं, तो तनाव हम पर हावी हो नहीं सकता।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता कहते हैं, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसा दृष्टिकोण वैसी मंजिल। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव, ये सभी स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में चुनौतियां न आती हो, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखता है वही कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। जी हाँ श्रोताओं, सकारात्मक सोच जिसका अर्थ समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उनका धैर्य, आत्मविश्वास और समझदारी से सामना करना है। जब हम आशावादी रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, निर्णय बेहतर होते हैं और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो श्रोताओं, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। जी हाँ, हमारी सकारात्मक सोच हमारे तनाव को दूर रखती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हर दिन की शुरुआत एक मुस्कान, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और अच्छे विचारों के साथ करें। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल न करें। हर दिन नया अवसर है, हर चुनौती नई सीख है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच होती है ना श्रोता, वो हमारे तनाव को दूर रखती है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, हार नहीं माने। असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा है। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी उत्साह और संचार भरते हैं जो सकारात्मक होते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना, आशा का दामन नहीं छोड़ना, न किसी से शिकायत करनी है, समाधान खोजने हैं। हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं श्रोताओं, बल्कि एक आदत है जो जीवन को सुंदर बनाती है, संतुलित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

श्रोताओं, बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, जिसकी शुरुआत 2020 में देश को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई। उपलब्धियां इसकी ये रही कि विनिर्माण को बढ़ावा मिला, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिला, डिजिटल भारत को मजबूती मिली, साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत हुई, कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई, रोजगार सृजन हुआ और निर्यात में वृद्धि हुई, आर्थिक क्षेत्रों में भी मजबूती आई और जो भी वैश्विक चुनौतियां थी उसके बाद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत बनाए रखा गया। आत्मनिर्भर भारत केवल एक सरकारी योजना नहीं श्रोताओं, बल्कि एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य ऐसा भारत बनाना है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके और लोकल से ग्लोबल की दिशा में आगे बढ़ सके।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

ठोकर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, गायक स्वर मोहम्मद रफी का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आशा भोसले के स्वर में अभी आपने हम साया फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का है,

0: एक घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर

0: गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और

0: इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation, and PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today.

साक्षरता दुख से आशा की ओर एक पुल है। साक्षरता को जीवन में कई नई चीजों की ओर पहला कदम माना जा सकता है। इससे व्यक्ति को अपने जन्मसिद्ध अधिकारों का ज्ञान होता है, वह कानूनों के आधार पर गलत और सही का एहसास कर सकता है। यह हमारे दिमाग को किसी चीज को गहराई से जानने और उचित ज्ञान के साथ जवाब देने के लिए अधिक उत्सुक बनाता है। समाज की प्रगति और उन्नति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षा होती है। शिक्षित और साक्षर व्यक्ति ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन लाभों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षरता को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के महत्व को जागरूक करना है। प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। यह थीम संचार को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहित करने के लिए कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर केंद्रित है। साक्षरता का मतलब व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं के साथ साथ शिक्षा प्राप्त होना है। यह न केवल अक्षरों की पहचान होती है बल्कि यह व्यक्ति को उसके अधिकार और कर्तव्यों की भी जानकारी देता है। साक्षरता के बिना व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों की अवगति नहीं कर पाता बल्कि समाज के उन्नति में भी योगदान नहीं कर सकता। साक्षरता का महत्व सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में ही नहीं बल्कि समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अधिक जागरूक, सकारात्मक और समर्पित भागीदार बनते हैं। उन्हें न केवल खुद की समृद्धि की पर्याप्त जानकारी होती है बल्कि उन्हें अपने समाज के मुद्दों के प्रति भी जागरूकता होती है और वह समाज में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। अनपढ़ता समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान साक्षरता के माध्यम से ही संभव है। साक्षरता के बिना अनपढ़ लोग समाज में निम्न वर्ग के काम करने के मजदूर होते हैं और उन्हें उच्चतम शिक्षा और व्यावसायिक विकल्पों का अधिकार नहीं होता। इससे उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में रुकावट आती है। शिक्षित समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शिक्षित लोग समाज में सक्रिय भागीदार होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्नति की दिशा की ओर बढ़ते हैं और नई विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े हों। साक्षरता के बिना कोई भी समाज पूरी तरह से उन्नत नहीं हो सकता। सभी को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम ही साक्षरता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा वर्ष 1965 में 7 नवंबर को तय किया गया। यह दिवस पहली बार वर्ष 1966 में 8 सितंबर को मनाया गया। यूनेस्को द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार विश्व के लगभग 84% जनसंख्या साक्षर है। आज की तारीख में दुनिया भर में 250 मिलियन बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते। दुनिया के 775 मिलियन निरक्षर वयस्कों में से लगभग 3/4 10 देशों में पाए जाते हैं। यूनेस्को की सभी देशों के लिए शिक्षा पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार बुर्किना फासो, नाइजर और माली में साक्षरता दर सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र के विश्लेषण के अनुसार 5 में से 1 वयस्क निरक्षर होता है। 75 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते और कई बच्चे अनियमित रूप से स्कूल जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं 1990 के एक अध्ययन के अनुसार भारत को सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में 2060 तक का समय लगेगा। यह आंकड़े हमारे लिए अच्छे नहीं है। इनमें सुधार होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि साक्षरता व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है बल्कि उसे समाज में योगदान करने की क्षमता भी प्रदान करती है। शिक्षित व्यक्ति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और समाज के विकास में सहायक साबित होते हैं। भारत अपनी विशाल और विविध आबादी के साथ सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी साक्षरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। भारत में साक्षरता सामाजिक आर्थिक कारकों से निकटता से जुड़ी हुई है और इसे सुधारने के प्रयासों में गरीबी, लैंगिक असमानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करना होगा। भारत में साक्षरता की दर पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है, हालांकि पुरुष और महिला साक्षरता की दर के बीच अभी भी एक उल्लेखनीय अंतर है। नवीनतम उपलब्ध

0: आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 82% है, जबकि महिलाओं के लिए यह लगभग 66% है। सभी के लिए शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को कम करना अति आवश्यक है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत की साक्षरता दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही। इसमें सबसे अधिक केरल में और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में रही, जो कि लगभग 90% से ऊपर रही। राजस्थान राज्य की बात करें तो यहां साक्षरता दर 66.11% है। पुरुष साक्षरता दर 79.19, जबकि महिला साक्षरता दर यहां पर बहुत कम 52.66% है। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध बताया गया। इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चे उतना ही अधिक पोषण प्राप्त कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। विश्व साक्षरता दिवस पर हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हम कैसे अपने समाज में साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाना चाहिए, अनपढ़ता को कम करने के उपाय ढूंढने चाहिए और शिक्षा के अधिकार की प्रतिष्ठा करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। साक्षरता एक शक्ति है जो हमें अधिक समृद्ध समाजवादी और विकसित समाज की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। विश्व साक्षरता दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का महत्व तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, बल्कि समाज में सभी क्षेत्रों में है और हमें इसे प्रमोट करने हेतु प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आइए इस बार शुरुआत बताने या समझाने से नहीं, समझने से करते हैं। एक नई शुरुआत खुद से करते हैं, साक्षरता दिवस पर एक प्रण करते हैं, उस यज्ञ में आहुति देने का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बरसों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला उतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही है। जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी हो। आहुतियां छोटी ही होती हैं, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होती हैं। ज्ञान के प्रकाश से वंचित तबके को इस बात का एहसास करा सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप घर पर किसी गरीब बच्चे को ना पढ़ा पाए तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपना कुछ वक्त निकालकर उन पिछड़े क्षेत्र व लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा कर सकते हैं। जहां शिक्षा में जरूरी मजदूरी और ज्ञान से जरूरी भोजन होता है, आप कम से कम सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाएं की जानकारी भी साझा कर सकते हैं, जो आपके छोटे प्रयास से अंधकारमय जीवन में एक नया दीपक जला सकती है, क्योंकि शिक्षा रोजगार या पैसे से ज्यादा खुद के विकास के लिए जरूरी है। खास मायने में विश्व साक्षरता दिवस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों का ध्यान शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के साथ ही उन्हें सही शिक्षा के संस्कार देना जरूरी है। शिक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग इंस्टीट्यूटों को भी चाहिए कि वो शिक्षा को मात्र रुपए कमाने का जरिया ना मानकर सही और योग्य संस्कारों वाले समाज का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। वही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी को चाहिए कि वे सिर्फ साक्षर ना बने बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति संकल्पित होकर अच्छे देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। अंत में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे

0: निधि वार्ता साक्षरता से सशक्त समाज की राह वार्ताकार थे श्री ब्रजेश कुमार वैष्णव।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठूला मारू चैनल है। एफएम पर आप हमें अभी सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज आप इस कार्यक्रम का 16वां एपिसोड सुनेंगे। वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा का है, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की और कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर की कुछ यादें बताने के लिए हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आज के श्रोता की यादें और अनुभव हम आपको सुनाएं, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी द्वारा रागम चैनल की शुरुआत कब की गई। श्रोताओं, 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को समर्पित करते हुए संगीत प्रेमियों के लिए रागम चैनल की शुरुआत की। यह चैनल हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह चैनल 7 दिन 24 घंटे चलने वाला सैटेलाइट और इंटरनेट रेडियो चैनल

0: डीटीएच मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है। आज रागम भारतीय संस्कृति की उस सुरम्य गूंज का जीवंत प्रमाण है जो लगातार शुद्ध शास्त्रीय संगीत का रस बिखेर रही है। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से महानगरों में ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक गांव ढाणी में विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम सुने जाते हैं। जहां आरंभिक दौर में वॉल्व के रेडियो सेट हुआ करते थे, वहीं ट्रांजिस्टर छोटे छोटे सेट और आज हमारा रेडियो हमारे हाथ में और हमारे जेब में आ गया है, और जहां सैटेलाइट के माध्यम से रेडियो के प्रसारण सुने जाते हैं, और अब वही इंटरनेट वेव ओटीटी के डिजिटल साधनों से आकाशवाणी के प्रसारण आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आकाशवाणी ने अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा ज्ञान, संगीत के गौरवशाली इतिहास को संजोए रखा है। श्रोताओं, आज के इस सफरनामा के अंक में हमने ऐसे श्रोता को शामिल किया है जो भले ही आंखों से दिव्यांग है, परंतु अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और आपका 5 वर्ष की उम्र से ही आकाशवाणी से परिचय हो गया था। आप हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री मूलचंद सोनी। क्या कहते हैं आप अपने परिचय में?
1: बचपन से मेरे को बाई आंख से थोड़ा दिखता था, जिसको ऐसे अपने कोई नाड़े ऐसे टचिंग में थी उसको हल्का सा दबाते थे तो थोड़ा दिखता था, उसको वापस छोड़ते ही वो कमजोर हो जाती थी जो दृष्टि थी वो। बाद में मद्रास में जाके ऑपरेशन कराया तो वो पूरा ही बंद हो गया। बचपन में 5 साल की उम्र में ऑपरेशन करवाया था, उससे पहले हल्का हल्का दिखता था और दाई वाली आँख से बचपन से नहीं दिखता था मेरे को। मैं जब 9 साल का था तब मेरा प्रवेश राजकीय नेत्रहीन विद्यालय में हुआ था, जो कि महिला मंडल के सामने बीकानेर में था। अब तो वो शिवबड़ी रोड पर शिफ्ट हो गया है, तो उस समय मैंने वहाँ प्रवेश लिया था। उस समय ब्रेल लिपि से पढ़ते थे, 6 बिंदुओं की ब्रेल लिपि होती है, उसमें वहाँ से पढ़ाई चालू की। फिर 9वीं से 12वीं जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान विद्यालय है, वहाँ टेप रिकॉर्डर से हम पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग किया हुआ जो 9वीं से 12वीं तक का जो कोर्स था, हर विषय की रिकॉर्डिंग करवा करके उसको सुन सुन करके याद करते थे। उसके बाद BA में जब मैं आया यहाँ जसवीर गेट के अंदर कॉलेज है, महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने BA+MA किया राजस्थानी और हिंदी में। उस समय डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम आ चुके थे, ऑडियो रिकॉर्डर MP4 वगैरह, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसमें रिकॉर्डिंग करके कैसेटे वाला जो वजन होता था वो घट गया, 150-200 कैसेटे होती थी पहले, वो सब कम हो गई। उसके बाद BA मैंने सांखड़ताल चूरू से किया, और उसके बाद कंप्यूटर आ गया, तो पहले मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, 2012 में थर्ड ग्रेड लगा, उसमें कंप्यूटर से पढ़ते थे हम। उसके बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी की, 2015 में सेकंड ग्रेड लग गया हिंदी विषय में, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, 2017 में फर्स्ट ग्रेड ज्वाइनिंग कर ली मैंने हिंदी लेक्चरर के रूप में, और उसके बाद 2023 में मेरा प्रमोशन हो गया वॉइस प्रिंसिपल पद पर, और उसके बाद मैंने इस दौरान जब फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग कर चुका था, उसके बाद में मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा था, और हिंदी में भी मैंने कई बार परीक्षाएं दी, और राजस्थानी में अंतिम रूप से मेरा चयन हो गया RPSC में, और अभी मैं डूंगर कॉलेज में राजस्थान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर

0: सोनी जी के जीवन में रेडियो कब और कैसे आया? क्या कहते हैं सोनी जी?
1: रेडियो मेरे जीवन में बचपन से ही, मेरे दादाजी मतलब शुरू से ही रेडियो प्रेमी थे, तो वो हमेशा उठते ही रेडियो

0: वो करते थे, और दोपहर में जब वो फ्री होते थे 3 से 5 या रात को भी रेडियो चलाते रहते थे, तो वो रेडियो सुनते थे, तो उनके पास मैं भी बैठता था। तो उस प्रकार से रेडियो मेरे लाइफ में प्रवेश पाया, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे को भी अच्छा लगने लगा।
1: आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते थे या अभी भी सुनते हैं, और सबसे पहले कौन सा रेडियो आपको मिला?
0: जब मैं छोटा था तो ठीक है, चाचा जी के दहेज में रेडियो आया था, वो जो लकड़ी वाला पहले आता था, जो कुछ देर गर्म होता था, 2-3 मिनट बाद चालू होता था, तो वो रेडियो मेरे चाचा जी के दहेज में आया था। वो वैसे बहुत शानदार रेडियो था, उसकी जो क्वालिटी थी, वो सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हम मतलब कोई आज के युग में कोई डिजी प्लेयर जो है ना, डिजिटल प्लेयर कुछ अपने गाना सुन रहे हैं, इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती थी उसकी। और सब 3 बैंड का रेडियो था वो, और मैंने लगभग 4-5 साल की उम्र से ही रेडियो के जो बैंड वगैरह, स्टेशन वगैरह बदलना, चेंज करना सीख लिया था, और मेरे को रेडियो तब से बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो खैर डिजिटल युग जो युग समय आ गया है, तो फिर भी रेडियो सुनता हूँ मैं लगभग सारी कार्यक्रम सुनता था। छुट्टी हो, मैं सवेरे 6 बजे उठता था, हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में मेरा क्या पहले मन नहीं लगता था शुरू शुरू में, तो मैं चाचा जी ने, चाचा जी के पास रहता था, तो उन्होंने कहा कि तेरे को क्या चीज़ चाहिए हॉस्टल में मन लगने के लिए। मैंने कहा मेरे को रेडियो मिल जाए ना, तो मेरा हॉस्टल में ना मन लग जाएगा। तो उन्होंने मेरे को रेडियो दिलाया था, सबसे पहले 2 बैंड का, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का, उस समय FM का इतना वो था नहीं। तो उस समय मैं 6 बजे उठता था सवेरे, हॉस्टल में उठते रेडियो चालू करता था, वंदन वार जो भक्ति कार्यक्रम आता है, या उससे पहले न्यूज आती थी 6 बजे, वहाँ से चालू करता था, तो स्कूल लगने तक रेडियो चालू रहता था, जिसमें चित्र पर संगीत है, 7:30 बजे गाने आते थे वो, और शास्त्रीय संगीत सुनता था, और उसमें जो महिला जगत है दोपहर में आता था वो भी सुनता था, और शाम को ग्रामीण जगत बहुत बढ़िया लगता था। युवानी 5 बजे से जब दोपहर में नींद लेके उठते थे, तो हमारा फिक्स था कि 5 बज गए अब उठना है, युवानी सुनेंगे, तो उस समय युवानी भी बहुत अच्छा आता था, अंताक्षरी वगैरह, वो फोन इन कार्यक्रम वगैरह सब उसमें आते थे, बहुत अच्छे अच्छे लगते थे। और रात को 11 बजे तक रेडियो सुनते थे हम, जिसमें एक ही शीर्षक से आप जैसे गाने आते थे, एक ही फिल्म से वो कार्यक्रम आता था, एक ही संगीतकार वो भी हम सुनते थे, मतलब और राजस्थानी के जो कार्यक्रम आते थे इसके गीतों के अलग से वो भी सुनता था, राजस्थानी लोक संगीत, सुगम संगीत, मतलब इतने बढ़िया लगते थे, विविध भारती वगैरह, ऑल इंडिया रेडियो, जोधपुर, लगभग उस समय जहाँ मतलब सोचते थे कि कोई आकाशवाणी मिस ना हो जाए, अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग आकाशवाणी से सुनता था।
1: आंखों से दिव्यांग होने के संबंध में आपके विचार और रेडियो से जुड़ाव का लाभ क्या है, आपने इस बारे में बताया।
0: मेरा ये मानना है कि सुनने से ज्यादा आदमी प्रभावी होता था, देखा हुआ तो अपने को सो चीजें दिखती है, मगर दिमाग में वो चीज सेट नहीं होती, हम जो चीज सुनते हैं ना वो चीज ज्यादा प्रभावी होती है। और रेडियो का जो है, मैं मोबाइल और TV से ज्यादा ऊपर स्थान रेडियो को देता हूँ, क्योंकि रेडियो में अगर दूसरी चीजों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, रेडियो में आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, और TV मोबाइल में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी आंखों में आया वो देख लिया, और बाकी उसमें क्या देखा वो फिर मिस हो जाता है। और रेडियो में एक बार आपने ध्यान लगा के सुन लिया, वो कुछ समय तक आपके मेमोरी में रहता है, और इसलिए मैं इसको रेडियो को 1 नंबर देता हूँ।
1: आपने आकाशवाणी जाने की बात भी याद करते हुए बताया।
0: आकाशवाणी बहुत बार गया हूँ मैं, मेरी जब मैं 7वीं क्लास में था तब मेरी इच्छा हुई, मैं पहले बांसुरी बजाता था छोटा था, तब भी अब तो कम बजाता हूँ, मौका नहीं मिलता, तो बांसुरी की रिकॉर्डिंग कराने के लिए मैं गया था वहाँ पर। तो 1999 में मेरी जो है कि ठीक से याद नहीं आ रहा है, 1998 या 99, उस समय पहली बार मेरी जो है वो बच्चों का कार्यक्रम मुकुल में, मुक्ता मैडम थे कोई, मुक्ता मैडम ने हमारी जो रिकॉर्डिंग करवाई थी, उन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग कराई, बांसुरी का प्रोग्राम पहली बार मेरा उस समय रिकॉर्डिंग हुआ था। उसके बाद स्कूल के बच्चों के साथ मैं कई बार गया हूँ, ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ 1-2 बार, और उसके अलावा भी वहाँ जाता रहा हूँ।
1: आकाशवाणी के कार्यक्रमों का असर भाषा, संस्कृति और सीखने और आधुनिक परिवर्तन की चर्चा करते हुए आपने अपने संदेश में कहा।
0: देखिए जो भी ये प्रोग्राम

सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी से, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आधुनिक साधन है बेशक वो बहुत बढ़िया है, मगर आकाशवाणी की जगह कोई भी, रेडियो की जगह कोई भी साधन नहीं ले सकता। क्योंकि रेडियो जब हम सुनते हैं तो पुरातन जो पहले की जो हमारा बचपन है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है ना। किस प्रकार हम दो दो तीन तीन आवाज़ें मिक्स होती थी तो अपने एक मन पसंदीदा गाने को सुनते थे, वो चीज़ हमें याद आती है। मगर आज की तारीख में वो चीज़ तो नहीं है, मगर डिजिटल रेडियो जैसे आ गया है, मैंने भी मंगवाया था डिजिटल रेडियो, उसमें नेट से चलता है वो, तो उसमें हर आकाशवाणी बिल्कुल आप साफ सुन सकते हैं। और आप कहने को तो कहते हैं कि हम गाने तो मैं जो पसंद है वो सुन सकते हैं, मगर मोबाइल में वो बात नहीं है जो रेडियो में एक बात होती है। और आज भी जो भाषा की जो बात है, तो एक भाषा को जैसे मैं मेरी बात करूं कि जो आकाशवाणी में जैसे बड़े बड़े, जैसे मैं अपने बीकानेर की बात करता हूं तो गिरधर व्यास जी थे, प्रमोद जी शर्मा साहब, ये जो मंदाकिनी मैडम जी, कविता वर्मा, ये सब इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, और नमामि शंकर जी

0: की जो बात है तो एक भाषा को, जैसे मैं मेरी बात करूं कि जो आकाश पानी में जैसे बड़े बड़े, जैसे मैं अपने बीकानेर की बात करता हूं तो गिरधर व्यास जी थे, प्रमोद जी शर्मा साहब, ये जो मंदाकिनी मैडम जी, कविता वर्मा, ये सब इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, और नमामि शंकर जी आचार्य जो राजस्थानी में, कई लोग मतलब और भी कई हैं जिनके नाम मेरे को याद नहीं आ रहे अभी, वो इतनी अच्छी अच्छी हिंदी राजस्थानी जैसे अपनी अपनी भाषा में बात कहते हैं, तो लगभग कहीं ना कहीं बोलना भी हम रेडियो से अगर सुने तो सीख सकते हैं। तो रेडियो को जो है वो आज वापस अपनाना चाहिए। और एक सुझाव देना चाहता हूँ साहब आकाशवाणी को, कि जो पहले एक जुड़ाव होता था, जो फोन इन वगैरह जो कार्यक्रम, जैसे आज भी अभी भी आते हैं फोन इन फरमाइश वाले जो गाने वगैरह सुनते हैं, वो प्रोग्राम मैंने सुना था एक दो हफ्ते चालू है वो भी, तो वैसे प्रोग्राम और ज़्यादा बढ़ाए जाएँ जिसमें क्या है फ़ोन के माध्यम से आकाशवाणी, जैसे कार्यक्रम अंताक्षरी वगैरह है या कोई प्रश्नोत्तरी है, इस प्रकार के कार्यक्रम अगर चाहे वो युवानी में जो प्रसारित हो या किसी और कार्यक्रम में वो उनका सेटलमेंट हो, कैसे करके वो वापस जो चीज़ें हैं वो जुड़ाव जो है वापस चालू हो जाए।
1: श्रोताओं, ये थे आज के हमारे पुराने श्रोता श्री मूलचंद सोनी। आपने अपने जीवन में आकाशवाणी से जुड़ी यादों और अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। इसी प्रकार हम आपके लिए, आप में से ही पुराने श्रोता जो आज भी आकाशवाणी के प्रसारण सुनते हैं, उनकी यादों और अनुभवों को लाते रहेंगे। निश्चय ही आपको इनकी यादें और अनुभव अच्छे लगे होंगे। अब इस अंक का समय पूर्णता की ओर है। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार को आपसे पुनः भेंट होगी नई यादों के साथ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज इस कार्यक्रम का 16वां एपिसोड प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित रहता है। आज के श्रोता थे श्री मूलचंद सोनी, वाचक स्वर था श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेड़ा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को

0: और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, विशेषकर गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की नियमित निगरानी और समय पर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 104 और 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मरीज को भेजे जाने वाले अस्पताल में पहले से सूचना दी जाए ताकि उपचार में देरी न हो। बैठक में दवाइयों, रक्त और अन्य जरूरी चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों तक यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी में जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारे चिन्हित हो गई है, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहाँ के लोग हैं या ओनर हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के साथ हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे हैं तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने सरकार ने कहा है कि वहाँ उनको भी 25 सुविधा करेंगे, उसका विकास करेंगे। सालासर हनुमान जी का भी विकास करेंगे, शाकंभरी माता भी है, जीण माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे और इसको कैसे देश भर से जोड़ना है ये भी काम करेंगे। जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए अब एक और नई परियोजना की मंजूरी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 110 करोड़ रुपए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इसका क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति इकाई करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: स्टेशन पर दो नई रनिंग लाइन, दूसरी पिट लाइन, दो नए प्लेटफॉर्म, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा सेकेंड एंट्री स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतिरिक्त रनिंग लाइन और नए प्लेटफॉर्म बनने से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। दूसरी पिट लाइन तैयार होने से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी जाँच की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन सीजन में यात्रियों और ट्रेनों का दबाव बढ़ने को देखते हुए यह विस्तार परियोजना स्टेशन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट आज से जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारा जिले से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर बारा के जिला परिषद सभागार में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है। इसके तहत विधानसभा स्तर पर केंद्रीय सुयोग युवा क्लब बनाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत और वार्ड स्तर के क्लबों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल किट और कौशल प्रशिक्षण तथा खेल और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाईमाधोपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में एक महिला शिक्षक के 1,000 रूपए खो जाने के बाद कक्षा 9

0: और 11 की छात्राओं की दो शिक्षकों ने तलाशी ली और उन्हें कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया। छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। घटना के विरोध में अगले दिन अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि साइबर अपराध और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये बात उन्होंने पाली के सदर थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में कही। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
1: इसमें जो सिटी में जो पुलिस इनका जो है उसका जो इवनिंग जो गश्त है उसको मजबूत करके शाम के समय जो मोटरसाइकिल या अन्य तरीके से जो कोई हुड़दंग का प्रयास करते हैं उनके बारे में एक विशेष कार्रवाई करके जल्दी अभियान चला के उनका रोकथाम के प्रयास करेंगे। अभी नशे खत्म के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर प्रचलन भी है और मुख्य रूप से यहाँ रूट भी है। पहाड़ी के दूसरी तरफ से जो ओपियम ग्रोइंग इलाके हैं उधर से अभी माने का ये रास्ता भी पड़ता है, तो इसके बारे में समय समय पर हम निर्देश देते हैं, नाकाबंदी भी कराते हैं और काफी मात्रा में पकड़ी भी जा रही है। उस पे और हम अधिक प्रयास करके इनको पूरा एक तरह से खत्म करने का पूरा हमारा प्रयास है।
0: प्रदेश भर में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप शुरू हो रहे हैं। ये शिविर 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और महिला एवं बाल विकास सहित 22 विभागों के आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के करीब 16 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार मॉनसूनी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। इसके असर से आज कल पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब्दुल गनी के गाए लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी अब्दुल गनी के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
4: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
4: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
3: जी।
4: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
4: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
4: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से

0: अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
1: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
1: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं।
0: जी,
1: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत। जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
1: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला?
1: जी।
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
1: जी
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीददारी का माध्यम क्या होता है?
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
0: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
0: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
1: जी
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे हुए अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।

0: कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्यौहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
2: यमन भैया कहाँ हो भैया?
3: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
4: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
2: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा, क्या लिखा है?
2: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
1: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
4: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
5: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
5: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
5: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
6: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
6: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
6: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
6: थैंक यू।
4: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
6: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
6: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
6: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
6: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: अरे बताता

0: हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
1: वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
0: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
0: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
0: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
0: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
1: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
6: संकेन।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया।
0: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
8: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से

0: बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांग केन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Buddy Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.

101.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें एफएम पर सुन रहे हैं और मीडियम वेव पर 215.5 मीडियम वेव 1395 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिंदगी तेरे नाम, गायक स्वर सुनिधि चौहान और वाजिद खान का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत शिल्पा राव और जावेद अली के युगल स्वर में है। फिल्म का नाम है ये साली जिंदगी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत ममता शर्मा और जावेद अली के स्वर में है। फिल्म का नाम है यमला पगला दीवाना।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में अभी आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का गीत सुना।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।
0: कार्यक्रम का अगला गीत मीका सिंह और साथियों के स्वर में है। फिल्म का नाम है पुष्पा टू द रूल।
1: पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: महल को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी बीकानेर का ये डोला मारू चैनल है। सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

इस गीत को अभी आपने सुना फिल्म भीगी पलकें से, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम था मेरे हम सफर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम धरती।

दोनों में फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम नागिन।

लता मंगेशकर की आवाज में है। अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था नागिन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मन्ना डे की आवाज में, फिल्म का नाम दिल की राहें।

भूले बिसरे गीत। आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता।

ये आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था शोर। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, यशोदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम नैया।

यशोदास की गाय इस गीत के साथ ही भूले भी से गीतों का ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडिंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन।

0: स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में SS प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में दिन में 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पहलों के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन दिन में 1:05 से। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेगी चर्चा, विषय रहेगा साइबर बुलिंग और अजनबियों से सुरक्षा के टिप्स। साथ ही सुनेंगे रसोई और ब्यूटी टिप्स। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगी संतोष चारण और रमा छंगाणी।

हमारी सांध्यकालीन सभा में युवा साथी सुनेंगे अपने कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे, आज की बात विषय रहेगा संगत से सफलता। साथी सुनेंगे लघु जानकारियां, रोचक जानकारियां और फिल्म संगीत। आज का यह कार्यक्रम पेश करेंगे ओजस्वी भटनागर और शारदा नैना।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा मोटे अनाजों की खेती से कम लागत अधिक आमदनी, साथ ही सुनेंगे जानकारियां विश्वकर्मा योजना और खेत में लगाएं फलदार और छायादार वृक्ष, साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाएं विषय पर जानकारी देंगे श्री अजय स्वामी और इनसे बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारिक। प्रस्तुति होगी श्री रेवत राम लेगा की, संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत, समय रहेगा शाम 7 बजे से। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और राकेश कुमार जोशी।

सुगम संगीत का समय रहेगा रात 7:45 बजे से। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 बजे से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8:15 बजे से।

रात 9:15 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 9:30 बजे का समय रहेगा सुगम संगीत और गजलों का।

रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, जिसे दिल्ली से रिले किया जाएगा।

ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होगा संधि कार्यक्रम।

हाजिर आयूं खणी अवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम अॼु जे सिंधी प्रोग्राम में मां वंदिता आहुजा तव्हां सभिनी जी आज़ियां थी कयां अॼु जे प्रोग्राम जी मां तव्हांखे रूपरेखा ॾियां त अॼु असां ॿुधंदासीं रेडियो जे खज़ाने मां हिकु भॻत कुझु चर्चा ऐं गॾो गॾु मज़ो माणींदासीं गीत संगीत जो साथियो तव्हांखे ॿुधायूं त अॼु 21 जुलाई ते असां हिकु उमदा लेखक ऐं वॾे विद्वान पंडित किशन चंद टोपणदास जेटलीअ जो जनम ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियूं हुननि घणेई किताब लिखिया अथनि ऐं सुठा धर्मी ऐं इतिहासिक लेख पिण लिखी करे हू अख़बारुनि खे मोकिलींदा हुआ हिननि जा 15-16 किताब शाया थियल आहिनि तव्हांखे ॿुधायूं त हिननि जो पुट बि वॾो विद्वान हो उन्हनि जो नालो हो मुरलीधर जेटली गॾो गॾु अॼु जनम ॾींहुं आहे आज़ादीअ जी हलचल में बहिरो वठंदड़ इंडियन पॉलिटिकल लीडर जयराम दास दौलत राम जो जॾहिं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका खां भारत आया त जयराम दास हुननि खां घणो मुतासिर थिया ऐं महात्मा गांधीअ जे वीचारनि खे हुननि अॻिते वधायो गांधी जी जयराम दास लाइ चवंदा हुआ त हू हिकु सचो माण्हू आहे सरोजनी नायडू पिण हुननि लाइ चयो आहे त हू रण में चिराग जीअं आहे हू सरदार पटेल ऐं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बि चङो वेझो हुआ साथियो हिन ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं हिकु कलाम

हर्षो शहदादपुरीअ जो कलाम ॿुधव। रचना हुई ढोलण राहीअ जी। साथियो, हाणे जीअं त असां तव्हांखे चयोसीं त रेडियो जे खज़ाने मां असां तव्हांखे भॻत ॿुधाईंदासीं, त अचो त ॿुधूं भॻत कल्लू राम ऐं साथियुनि खां।

हींअर मां भगत कलूराम ऐं साथियुनि खां भगत ॿुधव साथियूं सुभाणे 22 जुलाई ते नारायण गोकुलदास नागवाणी शाम जो जनम ॾींहुं आहे। सदा हयात मक़बूल शायर नारायण गोकुलदास नागवाणी शाम जो जनम 22 जुलाई 1922 जो नौशेर फिरोज़ नवाब शाह सिंध में थियो हो। नारायण श्याम हिकु गंभीर जिज्ञासु साहित्यकार ऐं महान रचनाकार हुआ। विरहाङे खां पोइ चाहे सिंध हुजे या हिंद, हम वक़्त सिंधी शायरनि में संदसि नालो सभ खां मथे हो। नारायण श्याम कुदरत जो सचो पुॼारी हो। हुन पंहिंजी शैली ऐं कल्पना शक्तिअ ज़रिए इंसानी सुभाउ ऐं कुदरत जी हर हिकु रचियल शइ ते पंहिंजो कलम हलायो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ खां पोइ सिंधी शायरीअ में नारायण श्याम जो मटु ॿियो को कोन्हे। संदसि दिमाग़ में हलंदड़ वीचारनि में हर वक़्तु कोन को प्रयोग जनम वठंदो रहंदो हो ऐं इहो ई संदसि कविताउनि में नज़र ईंदड़ दूरांदेशी सबबु आहे। माक बिना राबेल, वारीअ भरियो पलांद, आछींदे लॼ मरां, महकी वेल सुबुह जी, दात ऐं हयात रचनाऊं मेल जा पथर आहिनि। 1970 में वारीअ भरियो पलांद ते साहित्य अकादमी अवार्ड पिण मिली चुको आहे। साथियो, ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त घणनि ई नवनि शायरनि खे नारायण श्याम अवार्ड मिलियो आहे। खिज़ा हाल ओरे त कंहिं साण ओरे, सभई सिख्या जे बहारनि जी ॿोली, अला ईअं न थिए जो किताबनि में पढ़जे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली, अला ईअं न थिए जो किताबनि में पढ़जे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। इहे सिटूं असांजी सिंधी ॿोलीअ बाबति नारायण श्याम जी चिंता खे ज़ाहिर थियूं कनि। उन्हनि जी दिव्य आत्मा खे शत शत नमन ऐं वंदन आहे। साथियूं, जे ॻाल्हि हली आहे नारायण श्याम जी ऐं सिंधी ॿोलीअ जी, त असां हिन गीत खां परे कीअं था रही सघूं, त अचो त ॿुधूं हीअ सुहिणो सो गीत।

साथियों हाँ असा जे हलण जो वक्त आई अज जे सिंधी प्रोग्राम जो वक्त इते ही पूरो थी रहयो आहे वरी गजना सी इंदड़ विस्पत्ते इयही दिया में 12 वगे 10 मिनट ते तेसी ताई वंदता आहुजा के दींदा इजाजत नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम बेटी बेटे।

कर गए, चांद पर उतर गए, नैन वाले तेरे।

मर गए प्यार में निखर गए नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए जादू कर गए हो नैन जादू कर गए तीर भंग मेरे सीने में उतर गए नैन वाले

शैलेंद्र के लिखे गीत को अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। फिल्म का नाम था बेटे बेटी। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मी।

0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।
3: बेटे, प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे?
4: मेरी माँ मिली?
3: मिल जाएगी, आओ चलें।

मनाडे और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना है कि फिल्म का नाम था प्रहार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, यशोदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम स्वामी। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम अमर प्रेम। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर की गाइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली पहाड़ियों और इससे जुड़े मुद्दों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। समिति अरावली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों का अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन 25 मई को किया था। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात सहित अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, खनन पट्टा धारक, किसान, ग्रामीण, श्रमिक और स्थानीय समुदाय अपने सुझाव दे सकेंगे। समिति अरावली के पर्यावरण और जैव विविधता के साथ ही इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका से जुड़े विषयों पर भी विचार करेगी। संबंधित पक्ष 21 दिन के अंदर अपने सुझाव और आवश्यक दस्तावेज समिति को भेज सकते हैं। प्रदेश में कैंसर मरीजों को अगले महीने से उनके जिले में ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ उपचार की सुविधा मिलने लगेगी। कल जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि जिलों के मेडिकल कॉलेजों को SMS मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नई कैंसर गाइडलाइन भी लागू कर दी गई है जिससे मरीजों का उपचार और आसान होगा। बैठक में RGHS में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अनुसार अब ₹2,000 से अधिक की जांच के लिए आने वाले आवेदनों का निस्तारण 30 से 35 मिनट में किया जा रहा है। बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए नई उपचार सुविधा शुरू की गई है। चिकित्सालय के मनोचिकित्सा विभाग में स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के चयनित मरीजों को अब रिस्पैरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप राठौड़ ने बताया कि ये इंजेक्शन हर 2 सप्ताह में लगाया जाता है और नियमित दवा नहीं लेने वाले मरीजों के उपचार में उपयोगी है। इससे उपचार की निरंतरता बनाए रखने और बार बार अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। बाजार में इसकी एक खुराक की कीमत करीब 3,500 से 4,000 रूपये है। बारहवीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मेलखेड़ी रोड स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में जिला

0: विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायिक अधिकारी सत्य नारायण टेलर ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। बहने सुनेगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं संतोष चारण और रामा छंगाणी।

0: संतोष बहुत कारगर सिद्ध हो जाए करे,
1: बिल्कुल सिद्ध हो करे है। और जो कि बिना कह करे है कि हर फूल साथी नहीं खिले है, तो कोई बालक बेगो बोलू सीखे है, तो कोई बालक एक वक्त लेने उनरे पछे साफ और सटीक बोलू सीख जावे है। तो नाने बालका ने स्नेह और अपनाए त्री दरकारे हाथे बड़े ही धैर्य रे चाहता था का आपने उन्होंने बोलना सिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल संतोष। और जिया की देखो आज आ बात छिड़ी है तो मन मां लड़के री भी याद आ गई। मारो जी को लड़को थो, वो भी छोटे 5-6 साल थो, तो वो रन है वो बोलो करता थो। तो जिया की मारो नाम रामा है तो वो मां बोलो करता थो। तो फिर मने चिंता होगी कि भी बड़ो उनर बाद रमाने भी शब्द आई रेवेला, पर बखत रहते मैं भी थोड़ी आवाज रे मायने सुधार क्यों जिया कि आप बहना ने बताओ यहाँ कि एक एक शब्द ने खुलर बताओ, उच्चारण री थेरेपी बताओनी कि किसो शब्द कठे सु बोलियो जावे। और बहना थाने सब ने ध्यान होला कि आपने जो मुख होया करे, मुख रे मायने आपने 8 प्रकार उच्चारण स्थान होया करे, यानी कि दांत बोलन वाला शब्द अलग होया करे, जीभ बोलन वाला शब्द अलग हुए, कंठ सु जिका शब्द बोली जे बे अलग होया करे, होठा सु जिका शब्द बोली जे बे अलग होया करे, और सब उच्चारण स्थान जिको होया करे बेना अलग अलग होया करे। और कठे न कठे अगर उच्चारण स्थान आप पता कर लेवा नी संतोष, तो निश्चित रूप से अपने जिकी स्पीच थेरेपी जिया की थे बोल रहे हो उच्चारण जिकी क्षमता है मेरे मायने बहुत शुद्धिकरण आ जावे, यानी कि तुतला तो बच्चों तो साफ बोली है और टाबर ने उच्चारण स्थान सिखाते सिखाते अपनी भी जिकी वाणी है बस शुद्ध हो जाए करे। और देखो बेना अपने हमेशा याद भी रखना है कि शब्द खाली बोल कोनी, वो एक अनुभव है जिको बालक महसूस करें। तो उचित प्रयासों आपा पारे टावर ने धीरे धीरे और साफ बोलो सिखा सका। तो वैना अब चाला मनोरंजन की तरफ, सुना ओ अच्छो सो मीठो सो गीतड़ लो।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बिना जो कि आप जाने हाँ कि आज रो बखत इंटरनेट रो बखत है, मोबाइल सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम खेलती बेला सावधानी रखनी घनी ही जरूरी है। और अब बात करा साइबर बुलिंग री, यानी कि साइबर ठगी, तो थे सोचो ला कि भाई और साइबर बुलिंग कई होया करे, तो आप री जानकारी खातर बता दूं कि साइबर बुलिंग मतलब मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया व्हाट्सएप ऑनलाइन गेम या ईमेल जरिए कोई व्यक्ति ने बार बार परेशान करनो, डरावनो, गाली देवनो, झूठी अफवाह फैलानो, उनरो अपमान करनो या बिना सामने री अनुमति रे मुजब उनरी फोटो वीडियो ने साझा करनो, तो ऐसा बातें आया करे है।
2: और संतोष आपने देखो जड़े देखी साइबर बुलिंग री बात कर रहे हो तो इरे मायने आपने ऑनलाइन कोई भी गाली गलौज धमकी या आपनो जिको अपना अपमान करे तो बीरे जवाब रे मायने आपने झगड़ो नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐडे व्यक्ति ने तुरंत रूप से आपने ब्लॉक कर देना चाहिए। और आपना कोई भी भरोसेमंद परिवार सदस्य हुए जिया की माता पिता है, गुरु जी है, आने तुरंत रूप से इनकी जानकारी देनी चाहिए। और साइबर बुलिंग या मैसेज है, फोटो और जितना भी आपने आवे इरमाइने बुलिंग के जरिए, तो आने सब ने आपने क्या है सुरक्षित रखना चाहिए सबूतरे तौर पर। और इन सब रे मायने संतोष मोटी बात आई है कि भाई इन तरीके रे जाल रे मायने आपा अनजान लोगा सु किस तरीके सु दे रहे दूर रेवा आसू किन सरों पर बच सका, तो इन वास्ते बहना आपने करना है कि आपने ध्यान रखना है कि ऑनलाइन होने वाला ए जितना भी काम है बिहारे मायने आपने समझदारी रखनी है। और आपने कोई भी अजनबी व्यक्ति अपनी जानकारी बिना है जिकी साझा करनी कोनी, और जे कोई आपनो दोस्त है और अपनी जान पहचान वालों व्यक्ति है तो भी बहना सोच समझ कर ही आपने भी ने जानकारी है बात देनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही वो भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनजान लोगारी जिकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हुआ करे वे सोच समझ कर आपने स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा यहाँ कि शहरा में भी नहीं बल्कि आपने ग्रामीण परिवेश में आपने हर टाबर खाने आपने मोबाइल है वो दिखी है। और आजकल हर टाबर है जिको फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐज के चलाया करे,
2: और आज की जरूरत भी होगी।
1: हाँ बिल्कुल, तो आपने टाबरा ने आ चीज बतानी जरूरी है कि कोई भी अनजान लोग हुए तो उन री आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट है बस स्वीकार को नहीं करनी है। और कोई भी संदिग्ध लिंक या फाइल पर बिना सोचा समझा या बिना जांचा आपने क्लिक को नहीं करना है। और आप रो खुद रो एक मजबूत पासवर्ड बनाना है और बखत बखत माते उनने आपने बदल तो रहना है। और लास्ट में यानी कि अंत में एक मोटी बात बेना कि ऑनलाइन बात पर आपने कई बात हो या करे ऑनलाइन जी आप देखा यहाँ कि थाने लॉटरी लागी थाने गाड़ी मिलगी तो इन हिसाब री बात माथे आपने भरोसा नहीं करनो है। पहला उनकी पूरी जानकारी लेनी है, जांच करनो है और फिर वो आपने विश्वास करनो है, क्योंकि
2: सुरक्षित इंटरनेट जीवन ने सुरक्षित करो और पूरी समझदारी सतर्कता और जिम्मेदारी से डिजिटल दुनिया रो आनंद लो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: बिना आज रो बखत खरीदारी रे चाव रो बखत है, पण कई बार चमक दमक रे हालता थका आपा धोखो भी खाई जवा हाँ। तो इन खातर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हर उपभोक्ता ने सुरक्षा देवे है, अर जाग तो रेवे वो ठगयो कोनी जवे, तो आ आपा नठे कहावत भी है।
5: बिल्कुल संतोष, और आजकल नकली सामान, अवधि निकली उड़ी दवाया, गलत बिल, ऑनलाइन ठगी और मिलावटी खाद्य पदार्थ सु लोग परेशान है, और थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान कर सके है। लापरवाही रो फल तो देखो संतोष, घाटो ही घाटो होया करे।
4: बिल्कुल, और जो कि मान लो कि कोई भी पैकेट बंद सामान होया करे, आजकल आप देखा कि आपने अठे ग्रामीण परिवेश में भी आवे, चाहे जूस रहा हो या कोई भी हुए, तो उन्हें भी बिना आपने बिना तारीख देखिया आपने खरीदनो नहीं चाहिए। खरीदा तो उन पर देखा कि भी पर तारीख है, भी अवधि बा निकली तो नहीं है, सही तारीख में तो है, और अगर वो खराब निकल जावे तो आपा ऑनलाइन जो इनकी शिकायत भी कर सका हाँ। और इनके साथ ही आपा कि कोई ऑनलाइन सामान भी मंगावा तो उनमें आपा देखा कि कोई बीजी चीज भी आ जावे, जो कि कई बार अम्मा बहन आपा देखा हाँ कि लोग बाग क्या करे है कि मोबाइल मंगायो हो और उनमें पत्थर आई गयो या ईंटो टुकड़ो आई गयो, तो एड़े में भी बेना आपने चुप कोनी बैठनो है, तो उन सारू आपने उचित कदम उठानो चाहिए।
5: बिल्कुल,
4: और इनके सारू उपभोक्ता नाइलय भी बनोड़ो है, तो बटे आपा जार आपा जो को प्रार्थना पत्र है उनरे माध्यम से भी आपा शिकायत दर्ज करा सका हाँ। तो बिना आपा ने कहने अर्थ हो कि हर कोई भी सामान खरीदा, कोई भी चीज वस्तु खरीदा, तो आपा

0: पूरी तरह जांच पिछाण और पछे ही आपने बातचीत खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपने अटकया करे नी कि जिको जांच पिछाण रो सौदो और पछतावे रो नहीं, यानी कि सावचेती वेणी तो गणी ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अपने राजस्थान रे माने तो संतों से कहावत भी है कि मटकी भी लेवे तो ठोक पीटर लेवे, यानी तो फिर भी ना देखो आ तो खरीदारी री बात है, और खरीदारी यही फ्री में तो हुए कोनी, आखा देना पड़े, रुपया देना पड़े, तो इन सारू अपने सावचेती राखनी जरूरी है। हाँ, अगर दुकानदार थाने धोखो देवे या ज्यादा उचित मूल्य सु पैसा ले लेवे, खराब सामान दे जिको दियो करे भी वो बदलने से मना कर देवे या गलत जानकारी देवे, तो उपभोक्ता शिकायत आपा कर सका। और आज तो बहना सब सुचोखी सुविधा ये है कि आपा घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सका, पर बहना इरे मायने आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल को नहीं करनी, और सामान है जानकारी रहे साथ साथ खरीदने सागे कोई भी अगर समझदारी है आपने अपनानी है, क्योंकि देखो बहना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
0: और इन साथ ही बेना जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपने अठे एक जच्चा भी एक कहावत और सुनो रमा बेन के देख परखने लियो सामान वो नहीं पछता वे जजमान।
1: बिल्कुल, तो बेना, क्या बात
0: बिना
1: है?
0: बिल और बिना जांच और बिना जानकारी कोई भी सामान आपने खरीदनो नहीं चाहिए, आपारा हक जानो और दूसरा ने भी इन सारू जागरूक करो।
1: बिल्कुल सही कह रही है संतोष। और देखो बहना, कई बार थोड़ी सी लापरवाही अपने जीवन रमायने अपने नुकसान दे जाया करे, और इनरे वास्ते खरीदारी करते बखत कीमत, गुणवत्ता, तारीख और वाणिज्य की जांच है भी पूरी पूरी आपने जानकारी होनी चाहिए, और याद रखना है कि सावधानी में ही समझदारी है।
0: हाँ।
1: क्योंकि एक बार अगर आप सामान खरीद लेवा तो बिना बाद में घर आर बिना खोल और देखा और बिना मायने गड़बड़ी निकले तो कठे न कठे अपनी समझदारी धरी धरी रह जाए, तो इन सारू आपने समझदारी रखनी है।
0: बिल्कुल, समझदारी तो रखनी है, साथ ही आपने वो भी याद रखना है कि ग्राहक खाली खरीदारी कोनी है, वे आपरे अधिकार और धनी भी है।
1: बिल्कुल,
0: तो साची जानकारी आपने मांगनो और सुरक्षित सामान ही लेनो चाहिए, और धोखो मिले उठे आपने आवाज उठानी चाहिए, और हर उपभोक्ता जो को अधिकार होया करे तो वो आपने बात है जी आपने ध्यान रखनी चाहिए, सावचेती रखनी चाहिए और सुरक्षित रहनो चाहिए।
1: बिल्कुल संतोष। और देखो बहना, जद इति थाना उपभोक्ता जी का नियम होया करे, थाना जी का अधिकार होया करे, जे एक बार कोई दुकानदार ने बताओ ला कि भाई ओ सामान खरीदर मैं जी को लेर गई हूँ, इर मायने कोई खराबी आई है, और बिना जद थे इन नियमों रे तहत वापस करो ला, अधिकार रे तहत वापस करो ला, तो निश्चित रूप से वो जी को दुकानदार है अगली बार थाने सामान देवती बेड़ा बहुत ध्यान सु देवेला। यानी कि देखो थे जागरूक तो हुए ही, और बिन सागे सागे थे दुकानदार ने भी जागरूक करियो, और साथे साथे थाने जितना भी लोग है वे भी जागरूक होया। तो बेना आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपभोक्ता नियम जी का है वे अपना अधिकार है, और अपना अधिकार तो आपने पतो होनो ही चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो संतोष इन बातें सागे हालो आप सुनाओ अच्छो सो गीत लो।

बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05।

0: मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे मिड डे न्यूज और उसके पश्चात दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने

0: सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश

कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। दोपहर के 2:30 बजे हैं, श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये आवाज़ें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था मिलेंगे मिलेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुखविंदर, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम गर्व।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म तेरी बाहों में। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म राजा रानी में।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, अभिजीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम गर्ल फ्रेंड।

अभिजीत, सुनिधि चौहान और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर।

यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे से हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा

की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक

0: सिंह ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम।

0: सांप के मुंह में गिरने पर जहर। हम लोगों के आदमी तो ऐसा ही होता है ना, अगर हमारे आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं, तो हम में भी कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ दिखने लगती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और अगर हमारे आसपास का माहौल ही नेगेटिविटी से भरा हो तो उसका असर भी धीरे धीरे हमारे विचारों पर दिखने लगता है। तभी तो कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत।
0: बिल्कुल सही कहा, अगर हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो हमें बेहतर बनने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हम खुद भी रिस्क लेने या कोई नया और चैलेंजिंग टास्क करने से पीछे नहीं हटते।
1: दोस्तों, अच्छी और सही संगत सिर्फ हमें करियर ग्रोथ में ही नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करती है। फिर चाहे बात हमें इमोशनली स्टेबल रखने की हो या फिर अपनी आदतों में सुधार की हो, ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण की संगत ने अर्जुन को एक महान योद्धा बना दिया था।
0: यानी कि दोस्तों, हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को सोच समझ कर चुनना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी संगत भी हमारी सफलता का एक पैमाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसे कि आप दोस्त कह रहे हैं वो आपके किसी काम ही आए, पर इतना तो ज़रूरी है ना कि आपका उस पर इन्फ्लुएंस अच्छा हो।
1: बिल्कुल, ओजस्वी, ये सही इन्फ्लुएंस सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी सोशल मीडिया के जरिए कई नए लोगों से मिलते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उस समय भी इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन संगत जो है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है।
0: एकदम सही कहा शारदा। वैसे मैं अपने सभी साथियों से ये भी कहना चाहूँगी कि हमें खुद को भी ऐसा दोस्त बनाना है कि हमारे आसपास के लोग हमसे अच्छी चीज़ें सीखें, ताकि आप एक दूसरे की सक्सेस में मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, इसके साथ सही नेटवर्किंग और कम्युनिटी आपकी सफलता के लिए नए रास्ते तैयार करती है। इसीलिए आज ही थोड़ा ब्रेक ले, शांति से विचार करें कि क्या आप अच्छे लोगों के साथ हैं, वो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आपको हर दिन बेहतर बनने की हिम्मत देते हैं, या फिर वैसे लोग जो आपको गलत आदतें, डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं।
0: तो दोस्तों, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और ख़ुद को सही लोगों के बीच लाइए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका नज़रिया सिर्फ संगत बदलने से ही कितना बदल सकता है।
1: बिल्कुल, आप इस बात पर विचार कीजिए दोस्तों, और तब तक हम आपको सुनाते हैं आज के प्रोग्राम का पहला गीत।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। शाम के 5:05 हो चुके हैं और हर रोज़ की तरह आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त ओजस्वी,
1: और मैं शार्दुल। उम्मीद है दोस्तों आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव जा रहा होगा। तो चलिए उसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम को।
0: शारदा, आज मैंने रहीम दास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा पढ़ा जो हम सभी की लाइफ पर अप्लाई होता है।
1: अच्छा, फिर तो हम सबको भी बताओ।
0: शारदा, वो दोहा था, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन।
1: ये तो मैंने भी पढ़ रखा है ओजस्वी, और इसका मतलब है दोस्तों कि हम लोग वैसे ही बनते जाते हैं जैसी हमारी संगत होती है। ठीक वैसे ही जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद भले ही एक हो पर उसका गुण उसकी संगत के हिसाब से बदल जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, वही बूंद सीप में गिरने पर मोती बन जाती है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम क्विज सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपसे हर रोज दो सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में मिलते हैं।
6: तो बिना देर के जानते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ। हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी?
5: और दोस्तों, आपके लिए दूसरा सवाल है, भारत का पहला भाषा संग्रहालय या शब्दों का संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? सवाल फिर सुन लीजिए, भारत का पहला भाषा संग्रहालय या शब्दों का संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है?
6: दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो हमें मिल ही जाएंगे, पर आजकल का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस तपती गर्मी से कैसे बचा जाए।
5: बिल्कुल शारदा, ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज ने भी चैलेंज ले लिया हो कि राजस्थान को पूरी तरह से तपा कर ही दम लेगा। पर दोस्तों, रेगिस्तान के लिए मशहूर हमारे राजस्थान में भी कई ऐसी जगह हैं जो ना सिर्फ आपको गर्मी के मौसम में राहत देती हैं, बल्कि आपको प्रकृति के भी पास ले जाती हैं।
6: बिल्कुल, और उन्हीं में से एक है जैसलमेर झील, या जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शांत और खूबसूरत झील आपको झीलों की नगरी उदयपुर में देखने को मिलेगी, जिसे 1685 में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने बनवाया था।
5: और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? मतलब जहाँ तक नजर जाए बस पानी ही पानी। इमेजिन करो शारदा, इस तेज गर्मी में झील के पास खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेना, जैसे कोई नेशनल एयर कंडीशनर हो।
6: वाह, ये तो सोचने में अच्छा लगता है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात है ये है कि दोस्तों, कि आपको ये झील सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इतिहास और वास्तुकला के पास भी ले जाती है।
5: बिल्कुल सही कहा तुमने। इस झील के किनारे एक भव्य महल और 12 स्तंभों वाला एक मंडप भी है, जिसकी वास्तुकला आपको उसी समय में ले जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस झील में 7 द्वीप भी हैं।
6: बिल्कुल, इनमें से एक द्वीप पर तो आज भी भील मीना जनजाति रहती है ना।
5: बिल्कुल।
6: और दोस्तों, अगर आप नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज घूमने के शौकीन हैं, तो जैसलमेर झील के पास ही एक सेंचुरी भी है, जिसमें आप पक्षियों, हिरणों से लेकर तेंदुए तक भी देख सकते हैं।
5: यानी कि शारदा, जैसलमेर झील राजस्थान का एक हिडन ट्रेजर है।
6: बिल्कुल, एकदम सही कहा तुमने। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप भी समय निकालकर इस हिडन ट्रेजर को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है।
5: और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अगर आप ऐसी किसी भी जगह जाएं, तो वहाँ की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें।
6: तो इंतजार किस बात का है, बस कैमरा निकालिए, प्लान बनाइए और आनंद लीजिए इस खूबसूरत झील का, और फिलहाल इस अगले गीत का।

0: हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: ओजस्वी, आज सुबह चाय वाले भैया को मैंने UPI से पेमेंट किया और मेरे दिमाग में अचानक से आया कि जब भी हम नगद पैसे दें, कार्ड इस्तेमाल करें या ऑनलाइन पेमेंट करें तो पूरा सिस्टम आखिरकार चलता कैसे है।
2: बिल्कुल, हम हर रोज़ पैसों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके पीछे काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI की।
1: मतलब RBI सिर्फ बैंकों का बैंक नहीं है बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है।
2: एकदम सही कहा तुमने। दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बाद में वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और आज इसका मुख्यालय मुंबई में है। समय के साथ साथ इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं।
1: वैसे ओजस्वी, एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, हर भारतीय नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, क्या इसका कोई खास कारण है?
2: बिल्कुल है। देखिए, दरअसल RBI देश के अधिकांश नोट जारी करता है और उनके प्रचलन की जिम्मेदारी भी निभाता है। पर क्या तुम एक बात जानती हो कि 1 रुपए का जो नोट होता है वो RBI नहीं बल्कि भारत सरकार जारी करती है, उस पर RBI गवर्नर नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।
1: वाह, यानी हमारे जेब में मौजूद हर नोट की भी अपनी एक अलग कहानी है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। RBI का काम सिर्फ नोट जारी करना नहीं बल्कि ये सभी देश के जो बैंक हैं इनकी निगरानी भी करता है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और बैंकिंग व्यवस्था भरोसेमंद बनी रहे।
1: और शायद यही वजह है कि जब भी खबरों में रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट बदलने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसका असर होम लोन, कार लोन और EMI पर भी पड़ेगा।
2: एकदम सही कहा। रेपो रेट दोस्तों वही ब्याज दर होती है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। इसमें बदलाव होने पर बैंकों की ब्याज दरें भी प्रभावित होती हैं और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचता है।
1: दोस्तों आजकल तो डिजिटल पेमेंट का दौर है, UPI, QR कोड और मोबाइल बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो जिसमें क्या RBI की भूमिका यहाँ भी रहती है?
2: बिल्कुल रहती है शारदा। सुरक्षित डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना हो, ऑनलाइन लेन देन के लिए दिशा निर्देश जारी करना हो या फिर लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना हो, यानी जब की महत्वपूर्ण भूमिका हर जगह है।
1: यानी जब हम ATM से पैसे निकालते हैं, किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं या मोबाइल से भुगतान करते हैं तब कहीं ना कहीं RBI की व्यवस्था हमारे साथ काम कर रही होती है।
2: एकदम सही कहा। और शायद यही वजह है कि RBI को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। ये केवल नोटों और बैंकों का प्रबंधन नहीं करता बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास को भी मजबूत बनाए रखता है।
1: तो दोस्तों अगली बार जब आपके हाथ में कोई भारतीय नोट आए या आप एक छोटा सा UPI पेमेंट करें तो एक पल के लिए ज़रूर ये याद कीजिएगा कि इसके पीछे एक ऐसी संस्था काम कर रही है जो देश की आर्थिक व्यवस्था को हर दिन सुचारू रूप से चलाने में लग रही है।

0: और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों, इसी दिशा में काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
1: बिल्कुल सही कहा। UNEP की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका उद्देश्य दुनिया के देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ लेकर काम करना है।
0: दोस्तों, ये संस्था वायु और जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक कचरे, जैव विविधता और समुद्री संरक्षण जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर काम करती है। साथ ही ये देशों को पर्यावरण से जुड़े बेहतर फैसले लेने में भी मदद करती है।
1: दोस्तों, हर साल को मनाया जाने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी UNEP के नेतृत्व में मनाया जाता है। हर साल इसकी एक नई थीम होती है ताकि लोग पर्यावरण के किसी खास मुद्दे पर ध्यान दे सकें।
0: यानी कि शारदा, अगर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में सुनते हैं तो उसके पीछे भी UNEP की भूमिका है।
1: बिल्कुल, लेकिन केवल बड़ी संस्थाएं ही पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखती, इसमें आम लोगों की भी उतनी ही भागीदारी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। पानी की बचत करना हो, प्लास्टिक को कम करना हो, या फिर पेड़ लगाने या बिजली। बिल्कुल सही कहा, पानी की बचत करना हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना हो, पेड़ लगाना हो, या फिर बिजली की बचत करना, ये ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज दुनिया भर के देश मिलकर एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। UNEP इसी सहयोग को मजबूत करने का काम करता है
0: और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। ये हमें याद दिलाता है दोस्तों कि पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है। अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा जैसे तुमने। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप पर्यावरण संरक्षण की कोई पहल देखे या उसमें हिस्सा ले तो याद जरूर रखिएगा कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं।

0: ओजस्वी, पिछले कुछ सालों में तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, कभी अचानक से बारिश हो जाती है, तो कभी जंगलों में आग लगने जैसी खबरें सुनने को मिलती है।
1: बिल्कुल सुना है शारदा, ये सभी बातें हमें याद दिलाती हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।

0: शारदा, तुमने एक बात नोटिस की, हम लोग मोबाइल और बहुत लैपटॉप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम सभी के घर में कोई ना कोई पुराना मोबाइल चार्जर या ईयरफोन ज़रूर पड़ा होता है।
1: बिल्कुल, और यही पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, बैटरी, फ्रिज और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल होते हैं।
0: बिल्कुल, पर शारदा समस्या तब शुरू होती है जब लोग इन्हें सामान्य कूड़े के साथ फेंक देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा जैसे तुमने, इसीलिए ई वेस्ट को कभी भी सामान्य कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इसे हमेशा ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर या रिसाइकलिंग सेंटर पर ही देना चाहिए दोस्तों।
0: बिल्कुल, और आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इनमें सोना, चांदी और तांबे जैसी बहुत कीमती धातुएं भी होती हैं। इन्हें रिसाइकल करके हम दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
1: इसीलिए ई वेस्ट सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक उपयोगी संसाधन भी है जो किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान का हिस्सा बन सकता है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों ई वेस्ट कम करने का सबसे आसान तरीका है, जब तक आपका मोबाइल या लैपटॉप सही से काम कर रहा है उसे इस्तेमाल करते रहिए। छोटी मोटी खराबी हो तो उसे पहले रिपेयर कराने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, इससे सिर्फ आपके पैसे ही नहीं बचते बल्कि नए इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में लगने वाले प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है।
0: एकदम सही कहा, और अब तो भारत सरकार ने भी ई वेस्ट के सही प्रबंधन के लिए कई नियम बनाए हैं। आज कई कंपनियां भी ऐसी हैं जो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वापस लेकर उन्हें सुरक्षित तरीके से रिसाइकल भी करती हैं।
1: यानी दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तो पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, तो उसका सही इस्तेमाल और सही निपटान ये दोनों ही हमारी जिम्मेदारी हैं।
1: दोस्तों, छोटी सी यह आदत पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है।

0: चलिए दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम के शुरुआत में पूछे गए सवालों के जवाब देने का।
1: तो दोस्तों, आज का पहला सवाल था, हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका जवाब है पीवी सिंधु।
0: और आज का दूसरा सवाल था, भारत का पहला भाषा संग्रहालय या शब्दों का संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कोलकाता।
1: दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों जवाब सही होंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के रोजगार सूचना की तरफ। राजस्थान सीईटी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं।
0: सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए आवेदन करने के लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है और आवेदनकर्ता के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है।
1: दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 2 अगस्त 2026 है। इससे जुड़ी बाकी की जानकारियों के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका देता है। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए और मुस्कुराते रहिए। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ मैं शारदा आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई जानकारी और नए जोश के साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। नमस्कार।

सभी युवा साथी सुन रहे थे अपना युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं मोटे अनाजों की खेती में कम लागत अधिक आमदनी, हमारी जनगणना हमारा विकास और विश्वकर्मा योजना विषयों पर। साथ में चर्चा होगी खेत में लगाए फलदार छायादार वृक्ष। आज के इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता प्रसारित होगी जिसका विषय होगा केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाएं विषय पर। श्री अजय स्वामी से इस विषय पर बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारिक। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेहा की और संयोजन श्री अमित सिंह का। साथ ही इसके आप सुनेंगे लोक संगीत।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे 6:05 पर, जिसमें आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के कुछ फिल्मी गीत। अलावा इसके रात 8:15 पर और रात 9:15 पर आप फिल्म संगीत सुन सकेंगे। हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मौसम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने वाले हैं, क्षमा करें, संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र

परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक

0: क्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दाओकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है एक ही संगीतकार और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आपने सुना। अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ साथियों की आवाजों में फिल्म साजन से समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत। एक ही संगीतकार कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए साजन फिल्म का ये गीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा कुमार सानू और पंकज की आवाजों में

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है पत्थर। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और ये है नदीम श्रवण के संगीत से सजा फिल्म हम हैं राही प्यार के का गीत। आवाज साधना सरगम की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, कयामत फिल्म से।
3: बस बोलता ही रहो
4: तो बोलो ना। ये जो तुम्हारी आवाज है ना, गहरी
2: आवाजें हैं अभिजीत और कविता कृष्ण मूर्ति की, गीत समीर के है और संगीत नदीम श्रवण का है।
3: मगर मेरी बातें नहीं,
2: कार्यक्रम है एक ही संगीतकार, और आज के इस कार्यक्रम के संगीतकार है संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण।

0: ये था आज का फिल्म संगीत का एक ही संगीतकार कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम के संगीतकार थे संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण। फिल्म कयामत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। 6:30 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया। और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करके करें।

0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हमेशा दी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई। विभिन्न मुद्दों पर हुए शोर शराबे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित हुई। इसके बाद इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। नीट परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों के कारण लोकसभा में गतिरोध बना रहा। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दों पर बात करना चाहता है। उन्होंने संसद में विद्यार्थियों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। समिति ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के हितधारकों और पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों तथा स्थानीय समुदायों से, जिनकी आजीविका और कल्याण इस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, उनसे 31 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित अभियान है। इसमें युवाओं का पंजीकरण, प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव एकीकृत प्रणाली के माध्यम से होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही खेल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग की पायलट परियोजना की शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र से की गई है। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवा शक्ति का सकारात्मक होकर सही दिशा में बढ़ना आवश्यक है।
1: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
0: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य के बाहर भी निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से लागू की गई आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से देश के विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थी 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 6 महीनों में प्रदेश के 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब अन्य राज्यों के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाया है। सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ये योजना लागू की थी। इसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में उपचार का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि देश भर के 16,000 से अधिक सरकारी और 14,000 से अधिक निजी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। जयपुर में आज जेडीए मुख्यालय में परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जल निकासी तथा हरित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग 219 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें विद्याधर नगर के पास स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग क्षेत्र में रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क के लिए भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

राज्य में करीब दो सप्ताह के अंतराल के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात का दौर चला। सीकर में देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सीकर ग्रामीण में 11 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसा। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में जारी बरसात के कारण परवन नदी उफान पर आ गई है। बारा जिले में भी आज करीब 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर में भी सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर बना हुआ है। कोटा जिले में भी मौसम का मिजाज बदला और ग्रामीण अंचल झमाझम बारिश से तरबतर हो गए। झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन में भी मॉनसून सक्रिय है। बारिश होने से लोगों को उमस और तपन से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। मॉनसून की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के प्रमुख बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। बिसलपुर बांध अपनी क्षमता का लगभग 66% से ज़्यादा भर चुका है। वहीं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य में जागरूकता शिविर लगाए जाने पर जोर दिया है। श्री देवनानी ने से भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक ओमकारनाथ चौधरी ने आज भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाए गए। इसी कड़ी में ब्यावर के विभिन्न स्कूलों में नशा मुक्ति और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में भी न्यायिक अधिकारियों की ओर से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए से नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई गई। उधर हनुमानगढ़ में भी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। टोंक जिले के मालपुरा में 4 व्यावसायिक फर्मों पर राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने तलाश और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपयों की फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी किए जाने के संकेत मिले हैं। ये कारोबारी तिलहन, खाद्य तेल और चीनी के व्यवसाय से जुड़े हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये चारों फर्में एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों भाई खेत में पाइप ठीक करने गए थे। इस दौरान एक युवक फिसलकर पानी के डिग्गी में गिर गया। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूदा, किंतु पानी गहरा होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से उनके शव बाहर निकाले गए। डीग जिले के सरकारी स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र सरकार के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत ये पहल की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि इन इको क्लबों के माध्यम से साल भर वर्षा जल संग्रहण, वन महोत्सव और पौधरोपण की गतिविधियां होंगी। इनके जरिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को 2 पारियों में होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून को हुई वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए

0: सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे सिरोही जिले में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई आयोजन हुए जिसमें लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। वहीं धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से भी जिले में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस बीच माउंट आबू का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर पिछले दिनों संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित भी करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा। चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पिछले दिनों सिरोही जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आबूराज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि अरावली की गोद में बसा आबूराज आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है और योग के लिए सर्वोत्तम स्थलों में से एक है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन की सरकारी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। आज से शिविरों के फॉलोअप कैंप भी शुरू हुए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने पिंडवाड़ा में आयोजित सुगम्य सिरोही अभियान के प्रमाणीकरण शिविर का पिछले दिनों निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दूसरे चरण में शिवगंज, आबू रोड और सिरोही में भी दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किए जाने हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के घरठ, मालेरा, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, नर्सरी, मोरस बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। कभी हल्की बारिश तो कभी घने बादल और कभी धुंध से ढकी अरावली की पहाड़ियां पर्यटकों का मन मोह रही है। नक्की झील, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, टॉड रॉक, पीस पार्क और प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। छुट्टियों के दिनों में होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिरोही जिले में पिछले दिनों उल्लेखनीय कार्य हुआ। हरियालो राजस्थान अभियान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत रामपुरा के पीपल की चारागाह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिछले दिनों शिवगंज शहर को बड़ी सौगात मिली।

0: अमृत योजना 2.0 के तहत लगभग 31 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से शहरी जल योजना के संवर्धन और पुनरुद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया। नई जल टंकी सहित कई कार्यों से शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाऊं मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोन्यू सदना माए विपखरा सदस्यां रा हंगामा रा कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवाना ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश माए चौमासारी बिरखा ओजू शुरू हुई, कई थोड़ा में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवता भगत माए वेवण वाली परीक्षा वाला पेपर लीक वेवण रोकण सारू सगली संबंधित पार्टियां मिलर कोशिश करण बाबत कहो है। आज संसद भवन माए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए रा संसदीय दल री हर सप्ताह वेवण वाली रणनीति मीटिंग पाछे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि प्रधानमंत्री परीक्षा वाला पेपर लीक करण वाला रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण सागे देश रा नौजवाना रा भला रो संकल्प दोहरायो। रिजिजू कहो कि लाडला दिनाभिया नीट पेपर लीक मामला रा सगला आरोपिता ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी जेल में बंद है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करके करें।
1: श्री रिजिजू कहो कि प्रधानमंत्री मोदी न्यारा न्यारा देशां सागे करी जिया मुक्त व्यापार समझौता रा बारा मा ये जानकारी दीनी। वे कहो कि किसाना रा भला माथे खास ध्यान दियो चियो है और हमेशा दियो चावेला। संसद रा पावस सत्र रा दूजा दिन आज ही विपखरा सदस्यां का नियम करी जिया हंगामा रा कारण दोन्यों सदना री कार्रवाई नी चाल सकी। शोर शराबा रा कारण दोन्यों सदना री कार्रवाई पहली तीन तीन दफा और पछे आखा दिन सारू टालती रिची। नीट परीक्षा पेपर लीक समेत न्यारा न्यारा मुद्दा रा कारण लोकसभा री कार्रवाई माए लगातार अड़चन आई, जदके राज्यसभा माए विपखरा सदस्य परीक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों जुड़िया मुद्दा माथे हंगामो कीनो। लोकसभा माए विपखरा नेता राहुल गांधी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाओं मुलाकात कर विपक्ष कानून विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे बातचीत री मंशा जताई। वह संसद में विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे विगतवार चर्चा री मांग कीनी। ये पाछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया रे जरिए कहो कि सरकार नीट और वाऊ जुड़िया आंदोलन रे बारा माए संसद माए चर्चा सारू तैयार है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाई जी समिति अरावली री डूंगरियां और पहाड़ियां जुड़िया मामला माथे जनता री राय मांगी है। समिति राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली रा इणु जुड़िया एड़ा लोगां पर्यावरण विदा इन्हें बचावण वाला और स्थानीय समुदायों राय मांगी है जानी काम कमाई और भलो इणु जुड़ियो है। समिति ने 31 अगस्त ताई राय दी जा सके है। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे आधारित मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो है। इन तहत नौजवाना रा नाम मंडावण सिखावण और न्यारी न्यारी योजनाओं जुड़ाओ एकीकृत प्रणाली रे जरिए भय सकेला। इनरो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौकाओं जोड़ और खुद रे पाण उबा करनो है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग री पायलट परियोजना री शुरुआत जयपुर के बगरू विधानसभा हलकाऊ करी जी है, जिन्हें आगे पूरा राज्य में बधाई जावेला। मुख्यमंत्री

0: सेरा बतायो कई सा गई पालतू कुत्ता रा रजिस्ट्रेशन रो काम ही शुरू करण बाबत जयपुर में शिविर लगाया चावेला। वे बतायो का ऑनलाइन तरीका हुई घर बैठिया कुत्ता रो पंजीकरण करायो जा सकेला। टोंक जिला रा मालपुरा माए राज्य कर विभाग री प्रवर्तन शाखा तिलहन खाद्य तेल और शक्कर रा कारोबार जुड़ी चार फर्मा मथ तलाशी और जब्ती री कार्रवाई कीनी। इन दौरान करोड़ा रुपया रा फर्जी बिल लगार टैक्स चोरी करण री ठा पड़ी। जब्त करी जा कागजात री जांच करी जा रही है। श्री गंगानगर जिला रा राय सिंह नगर हल्का माए डिग्गी माए डूब जावन रे कारण दो जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा दोनों जना खेत माए पाइप ठीक करण किया हा जमायो एक जनो रपटर पानी रे डिग्गी माए पड़ गयो। वाने बचावन सारू दूजो जनो ही डिग्गी माए कूद्यो पर पानी गहरो वे वणु दोनों जना डूब गया और मारी मौत वे की। हादसा पाछे गोताखोरा ने मदद दोनों लाशां बाहर निकाली ची। डीग जिलारी सरकारी स्कूलां माए इको क्लब बनाया जावेला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा लगातार विकास रा लक्ष्य और केंद्र सरकार रा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन रा तहत आ शुरुआत करी ची है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह बतायो के आ इको क्लबा ने जरिए आखा साल बिरखारो पानी भेड़ो करण वन महोत्सव और पौधारोपण रा काम करिया चावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानून 26 और 27 जुलाई ने दो दो पारियां माए ली जावन वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 री जरूरी तैयारियां पूरी कर ली रिची है। परीक्षा सारू जिला स्तर माथे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये विचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर 28 जून ने कराई जी वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा री प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती रिची है। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाउ मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोन्यू सदना माए विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रे कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवानों ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा ओजू सरू भी कई थोड़ा मौसम में बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सुनने सगला भाया अर बनाने आप रहे तले भरत कुमार जादड़ा अर
1: राकेश कुमार जोशी रा घणान घणा
0: राम ही राम।
1: भरत भाई देखो बिरखा हो रही है
0: बिल्कुल,
1: आप तो स्टूडियो में बैठा लेकिन झिरमिर झिरमिर मेवलो जी को है बरसन लाग गयो है।
0: बिल्कुल हो रही है, पर देखो खेती रे लायक जीती बरसात से जब तो जो हुई को नहीं है, पर हाँ यहाँ कह सका कि छाटो छिड़को हो रही है
1: थोड़ा, नहीं तो आप अडीक तो राख ही सका।
0: हाँ बिल्कुल,
1: भगवान सो अरदास तो राख ही सका कि भी चोखो में बरसे और चोखो खेत अपनो पनपे।
0: बिल्कुल पनपे, और चोखी जो को है आप चोखी बाजरी हुए और बाजरी रोटी बाद में चूर चूर खावा आप साल भर चोखी देसी बाजरी हुए तो कहो ही कहीं
1: कहो ही कहीं थे।
0: दरअसल
1: बाजरी के... बात करी हो नी हाँ। तो भी वो मोटो ना जनी आपनो
0: हाँ।
1: मोटो पेड़ो और मोटो खानो
0: हाँ।
1: आपने राजस्थान की मरुभूमि री जगह धोरा धरती है नी
0: हाँ।
1: इरो पारंपरिक भोजन है।
0: बिल्कुल सही की, दरअसल बात में आई गए तो कि आपारे अठे तो बाजरी जो है इन मोटो अनाज कह करे और मोटे अनाज ने तो श्री अन्न भी कह करे देवता चढ़ने वालो भोजन।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि इन मायने कही है कि कई तरह का गुण जगह है भरियोड़ है, फाइबर इरमाइन हुए, कैल्शियम इरमाइन हुए, आयरन इरमाइन हुए, कई तरह का खनिज पदार्थ इरमाइन हुए, तो इर वास्ते सेहत से भरपूर जो को है भोजन है
1: और कम पानी में उगने वाला अनाज है
0: हाँ।
1: और अमृत रे समान है,
0: इरा
1: दाना जी कहनी मोती रे बरगा हुए।
0: बिल्कुल।

0: ऐसा हुआ। और एक बात वो नोट करा कि अगर कोई मोटो अनाज खावे तो भी ने मधुमेह होने की संभावना कम हो जाए, और कोई अगर कोई ने बीमारी हो भी जावे तो डॉक्टर कह रहे कि गेहूं की जगह बाजरी खाओ ज्यादा चोखो रहे। अगर केरी खून रे मैंने लोह की कमी हो जावे जकन के आयरन की कमी होगी तो भी कहवे कि बाजरी रोटी ज्यादा ज्यादा खाओ
1: खाओ,
0: तो ये घणो ही फर्क पड़े।
1: अब आजकल तो टावरा ने खड़ावण खातर बांध बांध रहा ही रहे नी, बिस्कुट भी बने, बेकरी आइटम भी बने,
0: बिल्कुल
1: तो भी सुगे टाबरा ने एक स्वाद लगे। और अपनो मकसद वही है कि टाबर भी बाजरी ने नहीं,

0: तो भी मैंने घनी खाद की जरूरत ना ही घनी देख रेख की जरूरत ना ही जको है घने पानी की जरूरत कम पानी में भी लाग जावे।
1: और आप फसल जी की नहीं आप माटी खातर भी पौष्टिक है, माटी में भी जी का पोषक तत्व है नी बिया बढ़ाने का काम करे अपनी बाजरी।
0: बिल्कुल सर,
1: धोरा धरती है बेलू धरती है इनमें आसानी से उगने वाली फसल है।
0: बिल्कुल सर, देखो बात तो है सही है पर अब जरूरत है कि नई पीढ़ी ने भी आप संस्कार देवा कि बाजरी जो है खाली आप पारंपरिक भोजन ही कोनी है, गुणा सु भरपूर भोजन भी है, इस वास्ते ने अपनाने री जरूरत।
1: और आपनो जो देश है वो दुनिया में सबसे लांठो और मोटो बाजरी उत्पादक देश मानी छे, और अठेरी बाजरी जी की है पूरे आखे संसार में बड़े स्वाद सु और चटकारे सागे खाई छे।
0: बिल्कुल कहे था चटकारे साथ बात की जकी तो ठीक है, अब मटकारे साथ थोड़ा गीतड़ला सुने री
1: सुना दो
0: तो सुनो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
5: जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हर 3 में से लगभग एक महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
6: भाई लोग देखो, जानकारी जकी है नी, वो आपो आप में एक धन होया करे है। कि अपने सजग रहना चीजें कहीं हो रही है वो पतो रहना चीजें, और खासकर अगर कोई केंद्र सरकार की योजना है मेरे तो पतो होना ही चीजें। और बीमे भी अगर विशेष बात करा तो केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में जकी योजना है मेरे तो जानकारी अपने होनी ही चाहिए,
7: क्योंकि आप किसान है, पशुपालक भाई है।
6: हाँ,
7: तो अपने गाँव में आ जानकारी हरेक भाई तक होनी चाहिए,
6: बिल्कुल होनी चाहिए। तो इन मुजब ही आज चौपाल में एक जानकारी है केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाएं, और आ जानकारी दे रहा है श्री अजय स्वामी जी, और यहाँ से बातचीत कर रहा है संदीप कुमार पारिक।
7: तो लो सुनो आ फूटरी सी जानकारी।
8: किसानों के समय समय पर बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो चलाई जाती रही हैं, और उन योजनाओं से जुड़कर किसान वर्ग जो है वो लाभान्वित भी हुआ है। लेकिन ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके अतिरिक्त समय समय पर भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष योजनाएं भी कृषि क्षेत्र में चलाई जाती हैं, जिनसे जुड़कर किसान और अधिक पैदावार और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही जो विशेष योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, और उनसे किस प्रकार किसान जुड़कर फायदा उठा सकता है, और इनसे जुड़ने के लिए कौन कौन सी बातों का किसान को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अजय स्वामी जी को। आप सहायक निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। स्वामी जी नमस्कार।
9: नमस्कार
8: स्वामी जी। हम जानते हैं कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो बीच बीच में भारत सरकार द्वारा लाई जाती हैं, ताकि एक आम किसान जो है वो उनसे जुड़कर अपनी खेती बाड़ी में नवाचार कर सके, अधिक उत्पादन जो है वो ले सके, और साथ ही साथ अपनी आमदनी को बढ़ा सके। भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो

0: किसान हित में चलाई जा रही है।
1: भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से सबसे पहले 2014 में एक योजना शुरू की गई थी। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 28 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चलाई गई। और इन सभी स्कीम्स को चलाने के लिए उसमें अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके अनुसार अलग अलग डायरेक्टरेट्स बनाए गए जो कि उन सभी स्कीम्स को स्टेट के द्वारा चलाए जाने के लिए मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन कर सकें। तो जिसके लिए जैसे बात करेंगे सबसे पहले हम मिलेट्स की, मोटे अनाज जिन्हें कहा जाता है, मोटे अनाज के लिए सबसे पहले एक सब मिशन चलाया गया था NFSM के अंडर में। तो यह जो सब मिशन था इस सब मिशन को मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स डेवलपमेंट जयपुर के द्वारा करवाया गया था जिसके अंडर 2 स्टेट्स आते हैं राजस्थान एवं गुजरात। इन दोनों स्टेट्स के अंदर सबसे पहले बाजरा का उत्पादन ज़्यादा होता है और दूसरा कुछ मात्रा के अंदर रागी और स्मॉल मिलेट्स का उत्पादन होता है। इसी तरह से ही जैसे कैश क्रॉप है गन्ना, तो गन्ना के लिए लखनऊ के अंदर एक डायरेक्टरेट बनाया गया जिसे डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन डेवलपमेंट कहते हैं। जूट के लिए अलग से स्कीम चलाई जाती है जिसे आज के तारीख के अंदर जूट मिशन के नाम से नई स्कीम का नाम दिया गया है। इसका डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सन 1967 के अंदर की गई थी जो कि सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जूट के उत्पादन को निर्धारित एवं मॉनिटर करता है। इसके बाद बात करें कॉटन के लिए, कॉटन के लिए स्पेशल मिशन चलाया गया था जिसे NFSM के अंडर में सब मिशन कॉटन के नाम से शुरू किया था। इस मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी और इससे पहले एक्रिप कॉटन के नाम से भी मिशन चलाया जाता। आगे अगर मिशन की बात करें तिलहन के लिए, तिलहन के लिए NFSM और NMEO नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम के नाम से मिशन चलाया गया है। यह मिशन किसानों को तिलहनों की उत्पादकता एवं उत्पादन और उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्रेरित करता है। किसान इन मिशन के तहत अपनी खेतों के अंदर उन्नत बीज भी ले सकते हैं और उससे संबंधित जुड़ी प्रैक्टिसेस जो हैं वो KVK एवं स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा अपने फील्ड के ऊपर यूज़ कर सकते। फिर हम बात करें अगली जो स्कीम है वो है पल्सेज मिशन। पल्सेज मिशन जो है वो सन 2024 के अंदर शुरू किया गया है। ये पल्सेज मिशन इसलिए शुरू किया गया है ताकि भारत के जो किसान हैं वो पल्सेज के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें।
0: आपने अजय स्वामी जी बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि कौन कौन सी फसलें जो हैं वो भारत सरकार द्वारा विशेष योजनाओं में सम्मिलित की गई हैं। जैसे आपने बाजरा के बारे में बताया, गन्ने के बारे में बताया, जूट और कपास के बारे में बताया, लेकिन अजय स्वामी जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो योजनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। जैसा कि देखा जाए सबसे पहले मिशन के बारे में मैंने बताया NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, इस मिशन के तहत अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग इंटरवेंशन के तहत सरकार किसानों को मदद देती है। यह मिशन जो है वो 28 राज्यों में चलाया जा रहा है यानी कि लगभग सभी राज्यों के अंदर इसकी पहुंच है। तो इस मिशन का अगर पहला इंटरवेंशन हम बात करें तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन किसानों को उनके खेत के ऊपर ही लगाकर दिखाए जाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय प्रदर्शन के नाम से बोलते हैं। ये क्षेत्रीय प्रदर्शन उनके द्वारा किसानों के द्वारा लगाई गई पहले की जो चेक वेराइटीज हैं उनके कंपैरिजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई नई उन्नत बीजों की किस्मों के कंपैरिजन पर उन्हें समझाया जाता है कि जो नई उन्नत किस्में हैं उनमें कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है और किसानों के द्वारा जो पेस्टिसाइड्स की और हर्बिसाइड्स की खपत है किस तरह से कम हो सकती है, जो कि एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फार्मर्स डबलिंग इनकम का एक मुख्य घटक है। जब हम दूसरे घटक की बात करते हैं तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन जो है वो भारत सरकार द्वारा राजस्थान एवं गुजरात राज्य की जो बीज एजेंसियां हैं जैसे कि RSSC राजस्थान की है, GSSC गुजरात की है, इन्हें ब्रीडर सीड दिया जाता है। ये ब्रीडर सीड को बाद में उत्पादन करके F1 F3 जनरेशन के द्वारा इन्हें अंततः सीड प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड सीड में बदला जाता है और यह फार्मर्स को देकर उसके बाद उन्हीं की फील्ड में लगाकर और उन्हें 10 साल की वैरायटीज के रूप में सुपुर्द कर दिया जाता है जिससे कि किसान की उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। तीसरा हम बात करें हाई यील्डिंग वैरायटीज। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सभी बीजों की किसानों को दी जाती है जिसमें इनका उत्पादन भी ज़्यादा होता है और इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल भी होती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये मेन है। अब अगर बात करें हम गवर्नमेंट और क्या क्या इसके रिगार्डिंग कर रही है तो इन सभी सीड्स का एक 5 किलो की थैली या 4 किलो की थैली के अनुसार जो भी बीज की वैरायटी है उसके अनुसार वो सीड रेट के अकॉर्डिंग किसानों को देते हैं और किसान इन बीज की थैली

0: को अपने खेतों में लगाते हैं, और लगाने के बाद में वो ये देखते हैं कि हमें हमारी पुरानी जो देसी किस्में हैं और ये जो भारत सरकार द्वारा दी गई जो नई किस्में हैं उनमें कितना अंतर है और किस तरह से उनके मुकाबले ये बेहतर है। फिर हम बात करें अगला जो CFLD जिसे कहा जाता है क्लस्टर फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें कई सारे फार्मर्स को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि एक गांव के अंदर लगभग 50 किसान हैं, उन 50 किसान का अपना अपना खेत होता है और उन सभी खेतों के अंदर एक क्लस्टर के रूप में इन सभी किस्मों को लगाया जाता है। इन सभी किस्मों को लगाने के बाद में यहाँ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसान अपने पहले जो फसल लगा रहे थे और आज जो उन्हें उन्नत बीज दी गए हैं उसमें क्या और बेहतर है। फिर इसके साथ साथ भारत सरकार केवल मात्र बीजों पे ही काम नहीं करती, इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स पे भी काम करती है। जिस तरह से दाल मिल भी दी जाती है, गोडाउन्स बनवाए जाते हैं, स्टोरेज गोडाउन होते हैं, और उसके अलावा रिफाइनिंग यूनिट्स भी दी जाती है और कृषि संयंत्र भी दिए जाते हैं, उपकरण भी होते हैं इसमें जो कि सब्सिडाइज रेट पर किसानों को दिया जाता है जिससे कि वे अपने खेतों के अंदर इनको उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सके और लागत को कम कर सके। इन सभी योजनाओं के लिए, इन सभी योजनाओं के द्वारा जो भी लाभ मिल रहे हैं और किस तरह से कल्चरल प्रैक्टिसेस किसानों को अपने खेतों के अंदर उपयोग करनी है इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण KVKs के द्वारा देते हैं, KVK के साइंटिस्ट फील्ड पर आके भी दे सकते हैं या ग्राम पंचायत में भी देते हैं या फिर किसानों का एक सामुदायिक भवन जो जिनके लिए सुटेबल रहता है, खासकर महिला वर्ग के किसानों के लिए पर भी आकर दिया जाता है। इनका साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा भी दिया जाता है। इसके साथ में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं ये भी इनमें सहभागिता निभाते हैं।
1: जी जी स्वामी जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी योजनाओं को न केवल उनके फार्म पर फार्म डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में बताया जाता है और साथ ही जो तकनीकी प्रशिक्षण है उसकी भी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे अजय स्वामी जी कि क्या केंद्र सरकार दलहन से संबंधित कोई विशेष योजना शुरू करने वाली है?
0: जी बिल्कुल सही है, दलहन से संबंधित एक विशेष योजना भारत सरकार शुरू कर चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है जो कि स्टेट के परव्यू में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग और फंड एलोकेशन का काम करती है, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, वह प्लानिंग करके स्कीम्स को बना के उसके बाद में स्टेट्स को देती हैं और स्टेट्स उसे स्टेट लेवल पे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करती। इसके लिए जो है वो सरकार ने अपने एक प्लानिंग बनाई है, नई स्कीम बनाई है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का मतलब ये है कि भारत की अगर अभी वस्तु स्थिति देखा जाए तो भारत इस वक्त सिर्फ 300 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि भारत के अंदर जो खपत है दालों की वो 300 मिलियन टन है, लेकिन इसके वनस्पत अगर भारत में देखा जाए कि उत्पादन कितना हो रहा है तो वह सिर्फ 60 मिलियन टन है जो कि बहुत कम है। अगर हम देखें तो यानी कि 240 मिलियन टन हम वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम जारी की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यही है कि दलहनों का उत्पादन को बढ़ाया जाए, भारत के अंदर जो डॉलर्स है जो कि बाहर जा रहे हैं उसको रोका जाए और उसके लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दलहन होती है, जैसे कि बात करें हम सोयाबीन की जो कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है, हम बात करें मूंग मोठ उड़द जो कि राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा यहाँ पर होता है, और उसके बाद में हम जैसे साउथ में बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर आपके जैसे मूंग भी वहाँ पे होता है। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने कुल 13,480 लाख का एक स्कीम बनाई है। यह स्कीम सेंट्रल और स्टेट शेयर के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि 60% हिस्सा जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा और 40% हिस्सा SNA अकाउंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जमा करेगी जिससे कि एक पूरा पैकेज बनेगा और एक सैंक्शन के तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर यह स्कीम रन हो सकती।
1: जी स्वामी जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कैश क्रॉप्स के बारे में भी और दलहन फसलों के बारे में भी जो विशेष योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अब एक मुद्दे की तरफ मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि आजकल काफी चर्चा जो है वो मोटे अनाज की पैदावार के संबंध में हो रही है और हम ये भी जानते हैं कि मोटा अनाज जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, तो किसान के हित में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस पे भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्ष 2023 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था और उसे मनाया गया। इसे न केवल भारत सरकार ने बनाया जबकि पूरे विश्व ने इसको अच्छे से मनाया और ये एक पहल

0: श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत ही उत्साहनीय और प्रशंसनीय रही। अब देखा जाए कि भारत सरकार में मिलेट्स के उत्पादन के लिए क्या गैप्स, अगर हम इन गैप्स की बात करें तो सबसे पहला ये है कि हमारे पास में स्मॉल मिलेट्स जो कि 5 मेजर क्रॉप आती है स्मॉल मिलेट्स में, जैसे कि बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट और लिटिल मिलेट, कोदो, कुटकी, इन सभी का उत्पादन इंडिया में बहुत कम है। भारतवर्ष में इसका उत्पादन कम से एक ऑप्टिमम लेवल तक लाने के लिए एक स्पेशल स्कीम्स चलाई गई जिसे कि सीड हब ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। यह सीड हब्स जो है जो कि भारत सरकार ने कुल 19 राज्यों के अंदर दिया गया है, सभी 19 राज्यों में एक एक सीड हब बनाया गया जो कि वहां का एक सिलेक्टेड कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाया जाएगा। यह कृषि विज्ञान केंद्र इन सभी सीड हब से रिलेटेड हाइब्रिड वेराइटीज को एकत्र करेगा, एकत्र करने के बाद में इनको सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इन्हें अपने स्टोरेज गोडाउन के अंदर स्टोर करेंगे। मिलेट सीड हब का स्टोरेज के बाद में भारत सरकार इन्हें अलग अलग किसानों को ई नाम पोर्टल के द्वारा विभाजित करेगी। इस क्षेत्र में बात करें सबसे ज्यादा जो अग्रणी है वो IIMR हैदराबाद है जो कि मिलेट्स के लिए स्पेशली सीड मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू एडिशन के लिए बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। यह मिलेट रिसर्च मुख्यतया मिलेट के बीजों को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट के बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे कि विशेष प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं, जैसे कि बाजरा में हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन में आटा खट्टा हो जाता है जो कि खाने योग्य नहीं रहता है। इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोजेक्ट उन्हें दिए गए हैं। इस वक्त IIMR कुल मिलाकर 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है जो कि ना केवल बाजरा, इसके अलावा ज्वार, रागी और कोदो के ऊपर काम किया जा रहा है।
1: जी अजय स्वामी जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रभावी प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, और खास तौर से जो 5 आपने मोटे अनाज बताए उनके ऊपर भी सरकार का विशेष फोकस है। अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो योजनाएं हैं इनसे अगर किसान जुड़ना चाहता है, इनका लाभ लेना चाहता है, तो किस प्रकार और कहां से ये लाभ जो है वो किसान ले सकता है?
0: सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस होता है जो कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत आता है। वहां पर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और ग्राम पंचायत एवं तालुका लेवल पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को तैनात किया गया जो कि इन स्कीम्स को एक्सटेंशन का काम करते हैं, जो कि सभी स्कीम्स का प्रचार प्रसार भी करते हैं। किसान सीधे तौर पर इन ऑफिसेस में जाकर और अपने लाभ से संबंधित योजनाओं के बारे में जान सकते हैं।
1: तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाएं कौन कौन सी हैं और उनसे जुड़कर किसान किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं, इस संदर्भ में जानकारी दे रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहायक निदेशक अजय स्वामी जी। स्वामी जी आप स्टूडियो में आए और किसान बहनों और भाइयों को इतनी अच्छी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जानकारी से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष योजनाएं विषय मत है भाई, आप सुनिए आप फूटरी सी जानकारी दे रहा है श्री अजय स्वामी और यहाँ से बात कर रहा है संदीप कुमार पारीख।
3: तो देवा घणो घणो धन्यवाद, पण धन्यवाद आप अटे सुखो दणेर परंपरा कोनी
2: साची
3: ही संगीत रूप में मैंने धन्यवाद दणेरी एक पुरानी परंपरा रही है बिन निभाते हुए निजर करा सा बरखा बरसे रिमझिम गीतड़ लो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

0: के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: भाई लोग, देखो हने ई दिन मैंने जनगणना रा जो को काम है कई जगह हो चुकियो है, कई जगह अभी भी हो रही है, और जो को जनगणना रा काम जो को है नी वो सगड़ो अपार वास्ते है, सरकारी जकी भी योजना है नी ए जनगणना रा डाटा रे माथे ही होया करे। पर कई भाई लोग है जगह जानकारी देने में संकोच करे, के सोचे के जानकारी माथे टैक्स लागे, जबकि सगड़ी जानकारी गोपनीय रखी जाए है और खाली खेती बाड़ी या विकास री योजनाओं में ही काम में ले जाए और कोई काम में ले जाए।
3: भरत भाई, जनगणना खाली जनता री गणना नहीं है।
2: हाँ,
3: जनगणना द्वारा आपने कई चीजा नो जानकारी हुए कि देश में आपने कितना मिनक है, कितनी लुगाया है, कितना टाबर है, कितना मकान है, और इरी संख्या रे आधार पर ही आपने देश रो विकास जी को है वो तय हुए।
2: बिल्कुल सही बात,
3: विकास री जी की योजनावा है वह योजनावा ये संख्या रे आधार पर ही बने कि लोगों रो जीवन स्तर केड़ो है और भी इन्हें और अच्छा क्या बना सका।
2: बिल्कुल सही है, और इस वास्ते जरूरी है कि जकी भी पापा जानकारी लेवे एकदम सही सही तरीके से देनी है अपने, और आ जानकारी कोई भी दुरुपयोग हुआ
3: कोई लुकाने छुपाने कोई जानकारी आपा नहीं लुकावा छुपावा।
2: हाँ, आप भलो है कि आपा सही बोला। और अबे भाई लोगा, आपने निजर करूं सा एक गीतड़ लो सुनो सा।

0: सुनो, स्कूल खुलने वाले हैं।
1: हाँ, तो वही बैग चलेगा ना, और वही यूनिफॉर्म और जूते इस साल भी यूज कर सकते हैं।
0: कर तो सकते हैं, पर उसने कहा है उसे सब कुछ नया चाहिए।
1: ओह, अब फीस और बुक्स का खर्चा भी है।
2: बात जब आपके बच्चे की पढ़ाई की हो तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मणप्पुरम फाइनेंस आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पेश करता है स्पेशल गोल्ड लोन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800420233। जब सुन

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: भरत भाई, आपने देश श्री जी की पहचान है बा है कि आपनो देश है वो गांव रो देश है,
2: बिल्कुल,
1: और गांव रे विकास ताई गांव में हर तरह राज्य का लोग है, बे आप रे हुनर रे हिसाब हूँ काम करता, चाहे बे सुथार हो, चाहे बे सुनार हो, चाहे बे कुमार हो, हर आदमी रो महत्व हो तो और हर एक काम रो महत्व हो
2: तो, और कोई भी काम करो तो बे जका कारीगर होया करे, आपरी कला सु समाज ने आगे बढ़ायो है और सागे सागे जको है वो भी ध्यान रखना है कि अब सरकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऐसा ही पारंपरिक हुनर जका लेर चलन नड़ा बिहार वासी बनुड़ी है, जरूरी है कि अब जावे और आपरो पंजीकरण
1: करावे। फूटरी बात करी थे और अब देखो सिंजर भगत है,
2: हाँ।
1: कोई अर्ज सुनाओ,
2: बिल्कुल सुनो सा गीतड़ लो सुनो, बोली प्यारी लागे।

भाई लोग हाँ गीतर लो सुनियो सा बोली प्यारी लागे समंदर खांदरी आवाज में। और अब देखो एक ही बात है कि बिरखा जद आवे नहीं तो आपने छ

0: छायादार वृक्ष तो लगानी है, सागे सागे फलदार अगर वृक्ष लगा ला तो भी चोखो रहे, और फलदार और छायादार वृक्ष जको है आपर घना काम आवे और प्रकृति वास्ते भी बढ़िया रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फलदार वृक्ष है बे आप देखा कि पशु पक्षी जी का है बे आकर्षित पक्षी बहुत हुए,
0: बिल्कुल,
1: और आकर्षित होने से बिया ने तो भोजन मिले ही है लेकिन सागे सागे आपने भी मिले।
0: जहाँ खेजड़ी की बात करा तो भी मैंने देखो आपने सांगरी मिले, ये जो है रोईड़ा नीम बबूल आम राजा का पेड़ है आप लगा सकते।
1: कई दर के तीसा है जी का अपने खेतरी जी की मेड़ हुए नी हाँ, लगाना चाहिए
0: बिल्कुल। इसके अलावा जो है अगर आप चाहो तो नींबू अमरूद ए छोटा पौधा है
1: बिल्कुल
0: भी लगा सका, ए भी आप काम आया करे।
1: देखो दवाई बातें करता करता आप कार्यक्रम रे लास्ट छेकड़ ले चोरे
0: बिल्कुल छेकड़ ले तोरे मत आ गया, अब घड़ी इशारो करिए कि विदा लेने रो भगत।
1: तो सीख देव आपरे साथी राकेश कुमार जोशी
0: अरे भरत कुमार जाजड़ा ने
1: मोकड़ा मोकड़ा
0: घड़ा घड़ा राम राम।

अभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुना माधुरी शर्मा के स्वर में ये भजन। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए महेंद्र पाल का गाया कबीर दास जी का लिखा ये भजन।

महेंद्रपाल के स्वर में गाई कबीर की इस भक्ति रचना के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बदरू खां के स्वर में तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

बदरू खां के स्वर में गाई तुलसीदास की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगी।

हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे

दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें

0: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खरगे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल

सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

श्रोताओं, बरसात के मौसम में घर से बाहर जब भी निकले सावधानी से चले। बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार आनंद बख्शी को।

0: कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर से। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, गीतकार आनंद बख्शी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 21 जुलाई 1930 को ब्रिटिश कालीन भारत के रावलपिंडी पंजाब में हुआ था। कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को उनकी जयंती के अवसर पर। यह है मेरे हम सफर फिल्म का गीत, महेंद्र कपूर बलबीर और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

ये है लता मंगेशकर और अमित कुमार फिल्म लवर्स में। आनंद बख्शी का गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने याद किया गीतकार आनंद बख्शी को उनकी जयंती के अवसर पर। फिल्म लवर्स में लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत

0: लोक संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी अल्लाह चिलाई भाई के स्वर में ये लोक रचना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए आप सुनिए करीम खां खेजरला के स्वर में ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए वीरेंद्र शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

0: महेंद्र शर्मा के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले होंगे समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज 8:09।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
2: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
4: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस

0: शर्मा आकाशवाणी समाचार गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह

0: Aconites.
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोतो, आज भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की पुण्यतिथि है। आज कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के संगीतबद्ध गीत से

संगीतकार सज्जाद हुसैन को याद करते हुए हमने आपको सुनवाया उनके संगीत से सजा फिल्म रुस्तम सोहराब का ये गीत तलत महमूद की आवाज में। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में परख फिल्म का ये नगमा।

लता मंगेशकर का गाया ये था परख फिल्म का गीत, शैलेंद्र के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत, और ये है मुकेश के स्वर में सबक फिल्म का ये गीत। सावन कुमार की गीत रचना और उषा खन्ना की संगीत रचना।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत। गुजार के बोल है और खयाम का संगीत।

सफाई के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गजलें।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी शंकर और शंभू की आवाजों में ये गजल। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम की ये अगली गजल।

ये थी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गाई गजल। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अब सुनते हैं गालिब की रचना शशिकला विर्क की आवाज में।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। बड़ी मुद्दत से मिला है ये मौका, इसे यूं ही जाया कैसे कर दूं। बड़ी मुद्दत से मिला है ये मौका, इसे यूं ही जाया कैसे कर दूं। दूरियां मिटाकर आया हूं नजदीक, कुछ आपकी सुनो कुछ अपनी कह दूं। दूरियां मिटाकर आया हूं नजदीक, कुछ आपकी सुनो कुछ अपनी कह दूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी पसंद कार्यक्रम में आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आया है आपका ये दोस्त चंद्रशेखर जोशी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए सुनिए, पेश है प्रोग्राम का ये पहला गीत।

जी हाँ, ये संगीत का जादू है जो एक दूजे को करीब ले आता है, जैसे कि आप और हम। वैसे कार्यक्रम का ये पहला गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था फिल्म अमानत से। साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत, और पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बीकानेर से जुल्फ़िकार अली, फिजा और जिया, इनकी पसंद पे ये गीत था। वहीं देशनोख से इस गीत को पसंद किया था गोपाल राम, प्रकाश दान और भूम दान ने। अब बात करें बीकानेर से बाहर, तो प्रमिलागंज आलोट से इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। लालगढ़ बीकानेर से इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली, मुमताज़, सोनू, टीना, वहीदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पवार और खातून बेगम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा, और अब बारी है हमारे उन श्रोताओं की जिन्होंने पसंद किया कार्यक्रम का ये अगला गीत। बीते दिनों की याद दिलाता ये गीत। अनमोल यादें जो शायद हमने भुला दी हैं।

मुकेश के स्वर में ये है मेरा नाम जौकर फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की इस गीत रचना को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

जी हाँ, चाहत का जादू होता है कि ये उम्र भर साथ चलती है। बहरहाल मुकेश की आवाज़ में ये था मेरा नाम जौकर फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की इस गीत रचना को सुरों में ढाला था शंकर जयकिशन ने। और बात फरमाइश की करें तो इस प्यारे से गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे सादुल शहर से ओम प्रकाश, मन्नो प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और बात बीकानेर की करें तो विवेकनाथ बगीची नथुसर बास बीकानेर से इस गीत को पसंद किया था बसंत नारायण पुरोहित, गायत्री पुरोहित, उमेश नारायण पुरोहित, श्रीवत्स, आरती रंगा, उज्ज्वल बच्छावत, सौरभ खत्री और इनके सभी सदस्यगण। शीतला गेट बीकानेर से इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन और अमजद अली ने। और मुंद्रा चौक बीकानेर से इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा था राम कुमार व्यास, राखी व्यास, रमेश व्यास और इनके परिवार के सदस्यों ने। आशा है कि आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। बात करें यादों की तो हमें याद सब कुछ रहता है, याद निगाह भी रहती है और निगाहों के साए भी।

जैसे जैसे शब्दों में भाव चले वैसे वैसे चला संगीतकार जयदेव के संगीत का जादू, और ये जादू चला फिल्म प्रेम पर्वत के इस गीत में, जिसे गाया था गायिका लता मंगेशकर ने, और पसंद इस गीत को किया था आप सभी श्रोताओं ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, पंचू सोनी, पावन यादव, सत्तू सोनी,

उन कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू सोना और इनके परिवार के सदस्य बारहगुवार चौक बीकानेर से आप हैं शंकरलाल ओझा, रामेश्वरलाल ओझा, राम, रोहित, मधुसूदन और इनके परिवार के सदस्य बारहगुवार चौक बीकानेर से ही इस गीत को पसंद किया था मनोज रंगा, शिव कुमार व्यास, नवल किशोर पुरोहित और कपिल श्रीमाली ने। हमारे जो श्रोता जो सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो हम आपको बता दें कि हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर। इसी गीत को पसंद किया था हमारे गांव तापू से, जोधपुर से विष्णाराम बलियान और इनके परिवारजन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सुना अपनी पसंद का ये गीत। और अब कार्यक्रम में थोड़ी सी चुलबुलाहट इस गीत के साथ।

0: चतुर नार करके सिंगार
1: एक चतुर नार बड़ी होशियार
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
1: अपने ही जाल में फंसत जात
0: हम मर

किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज़ों में ये था पड़ोसन फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत। और पसंद आप सभी श्रोताओं की थी मोमा सरबास, श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पवार, अकबर, राबिया, मुन्नी, बरकत हाजन, अजीज, गुलजार और असगर भाई। इसी गीत को पसंद किया था मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर से शशि व्यास और इनके परिवार के सदस्य। रतनी व्यासों का चौक बीकानेर से आप हैं टोटल राम रंगा और हर्षों के चौक से आप हैं रमेश हर्ष। वहीं इस गीत को जवाहर नगर बीकानेर से पसंद किया था बाबूलाल पनिया और इनके परिवार के सदस्यों ने। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। और अब सुनिए बाजार फिल्म की ये गज़ल।

लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज़ों में ये था बाजार फिल्म का नगमा। मखदूम मोहीउद्दीन की इस गीत रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार खय्याम ने और पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। श्री कौलायत जी से आप हैं फूसराज सोनी और इनके पारिवारिक सदस्य, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल शांति, मंजू मोहित हेमलता बेनीवाल, हांसी शहर से आप हैं राजू बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, बटिंडा पंजाब से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस डागला, क्षमा करें जे एस नायक, शोभा एवं पूरा डागला परिवार, भीना शहर बीकानेर से आप हैं धन्नाराम भादाणी, गिरधारी लाल भादाणी, गिरिराज भादाणी, पवन प्रकाश, गोविंद और माधव भादाणी के साथ पूरा परिवार। और आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत हमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रवि का संगीत।

दिल होते हुए भी जो दिल की बात ना समझे उसे पत्थर की मूरत ही समझा जाता है। फिर ऐसे ही कोई गीत गाता रहता है। बहरहाल ऐसे ही कुछ जज्बात थे फिल्म हमराज के इस गीत में, जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत। और बात करें पसंद की, तो इस गीत को पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। लेवई से आप हैं गुलाब दास मानिकपुरी, और ततरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा, डबवाली से आप हैं राजेंद्र अंजू मोहित नारंग, डबवाली से ही बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। बात करें हमारे बीकानेर के श्रोताओं की, तो पवनपुरी बीकानेर से इस गीत को पसंद किया था भंवरलाल सोनकरा प्रेमी गीतारानी।

एड्स मनोहर लाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज, कृष्ण मुकेश सोनगरा, सावित्री मिस्त्री, सीताराम पवार, टिंकू पवार, आशीष और जतिन सोनगरा ने। ये था आपकी पसंद कार्यक्रम का गीत, जिसे आप श्रोताओं ने पसंद किया और हमने इस गीत को आप तक पहुंचाया। और ये सब होता है चिट्ठी के माध्यम से।

जी हाँ, और आपकी चिट्ठी हमारे पास आई थी इस गीत की पसंद के लिए, और पंकज उदास की आवाज़ में फिल्म नाम के इस गीत को पसंद किया था हमारे इन तमाम श्रोताओं ने। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज आनंद बख्शी साहब की जयंती है, और आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गीत को पसंद करने वाले हमारे तमाम श्रोता हैं आप। रानी बाजार से आप हैं रानी जाम्ब और बिंदु जाम, फ्रांसी से राजकुमार, सरजीत सिंह और प्रमोद डूडी, भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, जलगांव से राम, दीपाली और स्वराज धाड़े, आप सभी ने ये गीत पसंद किया था आनंद बख्शी साहब की जयंती के अवसर पर। और कार्यक्रम का ये है अगला गीत। शराबी फिल्म से अनजान की इस गीत रचना को संगीत से सजाया बप्पी लहरी ने।

रबी फिल्म का ये गीत था आशा भोसले की आवाज में और पसंद करने वाले हमारे तमाम श्रोता थे एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल, अंकित, साहिल कांगड़ा और इसी गीत को पसंद किया था मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ शर्मा ने। यहीं से ही छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना और डॉक्टर रमेश कुमार के साथ गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू और जाजूरिया ने। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर के गोवा गेट से इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मोहनलाल सोनी, विवेकानंद सोनी और इनके परिवार के सदस्य।

ये थी जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म अर्थ की गज़ल। और पसंद आप श्रोताओं की जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। वल्लभ गार्डन बीकानेर से आप हैं एलसी शहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक, अनन्या, सत्यनारायण पवार और लालचंद पवार। कोहरियान मोहल्ला बीकानेर से आप हैं इकरामुद्दीन कोहरी और इनके साथी। कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और इनके परिवारजन। आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाए, उससे पहले लीजिए सुनिए आप श्रोताओं के नाम। रतलाई झलावाड़ा से प्रभुलाल मनोहर भाई और बागड़ी परिवार। पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, नीतु, निहारिका और वंश भट्टा। रिंगणी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ शाहू और शिवाजी नगर वडाली देशमुख से आप हैं राजेश, शिवसागर, इंदिराबाई और सुनैना। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का फिल्म अमृत का ये गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: तो दोस्तों ये था आज का आपकी पसंद का कार्यक्रम। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गाई फिल्म अमृत के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और इसके बाद अंग्रेजी में रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari.